0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
3: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते. 5:05 हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका कल का दिन बहुत अच्छा रहा होगा. और सुबह अब हम आ गए हैं. अगर थोड़ी देर में आप अपनी शॉप ओपन करने वाले हैं, रेस्टोरेंट, क्लिनिक या ऑफिस संभालने वाले हैं, तो पहले अपने मन को भी तैयार कर लीजिए. दिन भर कस्टमर मिलने वाले हैं, काम होगा, लेकिन शुरुआत अगर अच्छे मन से होती है तो दिन भी अच्छा गुजरता है. और हमारी तो यही कोशिश रहती है, सूरज की पहली किरण देखने से पहले आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए. मैं हूँ आपके साथ. चलिए शुरू करते हैं आपका प्रोग्राम राइज एंड शाइन. ये है आपके पुराने गाने, एंजॉय कीजिए आप सभी.
1: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Radio Musty.
1: Testing one, two.
2: Yeah. कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
3: तब दिल का

0: बजकर 14 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं हमारे साथ राइज एंड शाइन के साथ। सुबह की यही तो सबसे खूबसूरत समय होता है, थोड़ी सा अंधेरा, थोड़ी सी मॉर्निंग की इंतज़ार में हम लोग बैठे होते हैं और एहसास करते हैं कितना सुंदर होगा मॉर्निंग। और बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के आज की मॉर्निंग शुरू कीजिएगा, हंसते रहिएगा। चाय पी रहे हैं तो चाय पीजिए, कॉफ़ी ले रहे हैं तो कॉफ़ी लीजिए, यहाँ आप दूध ले रहे हैं, कुछ भी जो इस समय आप खा रहे हैं या पी रहे हैं, बहुत ही बड़े स्माइल के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ इंजॉय करते रहिए अपने पुराने गानों को। और साथ में अगर आपको कोई मैसेज भेजना है, कोई डेडिकेशन है, तो हमें भेज सकते हैं 5499124 पर, हम इंतज़ार में हैं और थोड़ी देर बाद हम आपके मैसेजेस भी लेंगे। तो ये तब तक प्यारा सा गाना आप सबके लिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:26 हो चुके हैं. टाइम ऐसे भाग रहा है जैसे उसने ट्रेन पकड़ लियो. भाई हमें भी पता है आप लोगों ने थोड़ा सा वैन का इंतज़ार करना होगा, बस का इंतज़ार करना होगा, मेट्रो का भी इंतज़ार करना होगा. ये सब तो चलता ही रहेगा, पर अब भी जो एक हमारे ऐसे कोई ना कोई लिसनर होंगे जो एक तरफ तो हमारे गाने सुन रहे हैं और दूसरी तरफ मोबाइल देख रहे हैं और साथ साथ स्क्रोलिंग शुरू कर दिया होगा और टाइम पास कर रहे होंगे. एक के बाद एक रील चल रही होगी. तो मत कीजिए, सुबह का टाइम है, परिवार के साथ थोड़ा सा बिताइए, अपने दोस्तों के साथ बिताइए, किसी को मैसेज कीजिए, किसी से पूछ लीजिए हाल चाल, क्योंकि यही टाइम है आपका जहाँ से आपको स्माइल चाहिए अपने दोस्तों से ले लीजिए, वरना ऐसे ही निकल जाता है टाइम, पता नहीं चलता है इसीलिए. और अगर आपके पास कोई काम नहीं हो रहा है इस समय, आपका दिल कर रहा है सिर्फ स्क्रोलिंग करना, बिल्कुल मत कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम तो आपके लिए पढ़ देंगे. तो चलिए 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं इस समय. हमारे साथ सेतुल जी जुड़ी हुई हैं और रात को 2 बजे मैसेज किया. या तो आप लेट नाइट काम करते हैं मैम, या फिर आप हमें इतना मिस करते हैं कि रात को 2 बजे मैसेज किया. और सबसे पहले मेरा दिल किया कि जिसने सबसे पहले मैसेज किया उसका तो पढ़ना ही चाहिए. तो चलिए भाई आप इंजॉय कीजिए, हम बेस्ट विशेस भेज रहे हैं अपने दिल से कि हमेशा खुश रहिए. माला सुमारो जी कतुबोन से साथ दे रही हैं. रेडियो मस्ती सुबह सुबह की पहली किरण बनती है हमारे लिए और हमारे गम भाग जाते हैं. ये तो सच बात है, रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ रहता है. और हम ये नहीं कहते कि सुबह सुबह की किरण, रात का अगर चंद्रमा भी देखना है तो हमारे साथ ही देखो. चलिए भाई जयशन जी साथ दे रहे हैं और मॉर्निंग में भी अपने कलीग्स को और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को विश कर रहे हैं और कह रहे हैं सब लोग अपने अपने घर में इंजॉय कीजिए, ये मॉर्निंग आप सबकी है और जो भी पी रहे हैं खा रहे हैं इंजॉय करते कहिएगा. क्या बात है भाई, सबको एक दूसरे की अगर ऐसे चिंता होने लग जाए तो मज़ा ना आ जाए. चलिए साधना जी और मुकेश जी साथ दे रहे हैं और लाल माटी से और विश कर रहे हैं पल्लवी एंड आयुष को, क्योंकि उनकी शायद वेडिंग एनिवर्सरी है या उनकी वेडिंग है, ये उनका क्लियर नहीं हुआ. तो पर कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ ही इंजॉय कीजिए. पर हम उनको कहते हैं कि अगर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उनको एक गिफ्ट लेके जाइए, और अगर उनकी वेडिंग है तो भी गिफ्ट लेके जाइए और हमें भी साथ में बुला लीजिएगा. चलिए इस समय साथ में राजन रघुपत जी भी साथ दे रहे हैं लंदन से, और आपका मैसेज हमेशा बहुत ही दिल को सुकून देता है क्योंकि आपका मैसेज इतना प्यारा छोटा सा होता है और हम चाहते हैं कि आपके मैसेजेस हमें आते रहें. चलिए इंजॉय करते हैं पुराने गाने, ये है आपके लिए.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: to
1: Radio Musty. Your daily horoscope. RM2 Radio Musty.
2: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूनम और एक नई सुबह नई किरण और 24 घंटे आपके नाम। तो चलिए देखते हैं आज आपकी राशि के लिए सितारों में से कौन सी प्यारी सी बात लिखी है। चलिए एंजॉय करते हैं आपका राशिफल।
3: एरीज मेष राशि,
2: आज आपकी रफ्तार सही दिशा पकड़ सकती है। एक छोटी सी खुशी बड़ा बदलाव ला सकती है। खुद पर भरोसा रखिए, दिन आपका साथ देगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 8।
3: टॉरस वृषभ राशि,
2: आज दिल को सुकून देने वाले पल मिल सकते हैं। किसी अपने से अच्छे से बातचीत हो सकती है और वो बातचीत आपको खुशी देने वाली। आराम से चलिए, सब ठीक होता चला जाएगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
3: जेमिनी मिथुन राशि,
2: आज आपका अंदाज लोगों का दिल जीत सकता है। नई सोच आपको आगे बढ़ाएगी। मुस्कुराहट और मुस्कुराते हुए अपने इस प्यारे से दिन की शुरुआत कीजिए और उसका स्वागत आप बस अच्छे से काम से कीजिए। लकी कलर बनेगा येलो, लकी नंबर है 5।
3: कैंसर कर्क राशि,
2: आज घर और परिवार से अच्छी ऊर्जा मिलेगी। किसी की एक प्यारी सी बात आपका दिल बना सकती है और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहेंगे तो बढ़ती रहेगी। लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि,
2: आज आपकी मौजूदगी ही आपकी ताकत बनेगी। जिस काम की शुरुआत आप बहुत से काम पहले से करने वाले थे, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें अच्छा दिन भी बनेगा और अच्छा भी लगेगा क्योंकि आपको ये काम करना ही है। तो आप बस आत्मविश्वास बनाए रखें और इस काम को करें जिस काम के लिए बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं। लकी कलर है गोल्ड, लकी नंबर है 1।
3: वर्गो कन्या राशि,
2: आज खुद को थोड़ा सा हल्का रखिए। हर बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे पल आपका इंतजार कर रहे हैं। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
3: लीब्रा तुला राशि,
2: आज किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह बनेगी। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। दिन और दिल को सुकून मिलने वाला है। लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 4।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
2: आज आपका हौसला नई राह दिखा सकता है। जो ठानेंगे उसे पूरा करने का जज्बा रहेगा। खुशखबरी मिलने के संकेत है। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 9।
3: सजिटेरियस धनु राशि,
2: आज कुछ नया देखने या सीखने का मौका मिल सकता है। अपनी अच्छी एनर्जी सबसे सबके साथ बांटिए और अच्छी एनर्जी को पॉजिटिव बना के आगे चलते रहिए। दिन यादगार बन सकता है। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3।
3: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
2: आज मेहनत ही चमक साफ दिखाई देगी। हर कदम आपको मंजिल के करीब लेके जा रहा है। दिन संतोष भरा रहेगा। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
3: एक्वेरियस कुंभ राशि,
2: आज आपकी अलग सोच आपको सबसे अलग पहचान बनाने को एक मौका दे रही है। अपनी बात पूरे विश्वास से रखिए। जहां भी जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस आपको साथ लेके चलना है। बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज आप परेशान हैं। अपने चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह की शिकन मत आने दीजिए। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।
3: पाइसेस मीन राशि,
2: आज दिल खुश रहेगा और मन हल्का महसूस होगा। अच्छे लोगों के साथ दिन की खूबसूरत बनेगा और शुरुआत भी बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है। हर पल को मुस्कुराते हुए जिए। लकी कलर बनेगा सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। दोस्तों याद रखिए, अच्छी सुबह अच्छा सूरज नहीं बनाता, आपकी सोच बनाती है। तो बस अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। ये था आज का राशिफल। थोड़ी देर बाद से जुड़ पाएंगे आप संक्षिप्त समाचारों के साथ।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musty. Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Good morning, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से. अदिति, आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. राज्यसभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम इसे पारित किया गया. ये विधेयक हाल ही में पारित

0: एक पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ अब कोई आरोपी अपने विवाहित होने या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2026 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राज्यसभा में कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 697 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर हमला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती गुट ने सऊदी अरब की बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। ये तनाव अमेरिका के नए हमलों, सेना को हो रहे नुकसान और मीडिएटर्स के जरिए लगातार जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच बढ़ा है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान उत्तर पूर्व में बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। रात के दौरान हल्के बादल घिरे रह सकते हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:44 पर सूर्योदय, शाम को 5:49 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:09 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। हम तो हर मोमेंट के लिए आपके लिए गाने लाते हैं कि आपका मूड अच्छा हो, पूरा दिन अच्छा जाए और आपको सुबह सुबह हर चीज़ जिस भी काम में आप बैठे, देखिए हम तो यहाँ पर रेडियो पर हैं पर आप अपने अपने घर पे हैं, अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, पर हम आपको चाहते हैं कि आप जिस भी तरीके से जाइए आपका बस मूड अच्छा होना चाहिए। तो चलिए बहुत सारे प्यारे प्यारे गानों के साथ एक प्यारी सी हेल्थ टिप भी देना चाहती हूँ मैं आज, कि एक हेल्थ टिप ये है कि कई बार हम सोचते हैं जब हम टैबलेट्स लेते हैं तो लगता है कि गोली बड़ी है तो चलो आधी तोड़ लेते हैं, उसके अंदर एक लाइन होती है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आप सबके लिए। तो उसमें जब लाइन होती है तो वो टैबलेट जो लाइन बनी है डॉक्टर की सलाह से ही उसको आधा कीजिएगा। अगर डॉक्टर कहते हैं कि इसकी सिर्फ हाफ लेनी है तब आप लीजिएगा जिसमें लाइन बनी है, और लेकिन जो बिना लाइन वाली टैबलेट है या कैप्सूल है उसको आपने तोड़ के नहीं खाना, वो आपके जब स्टमक में जाएगा, आपके बॉडी में जाएगा, वो स्लो प्रोसेस करेगा, जिस टाइम में आपको लगनी चाहिए वो टैबलेट वो तभी लगेगी। हो सकता है वो 2 घंटे के बाद आपके स्टमक में ओपन हो और वो काम करे, उससे पहले आपने कोई और टैबलेट लिया। तो ये एक प्रोसेस होता है, कई बार होता है कि उसके ऊपर कलर्स होते हैं दवाई के ऊपर, पिंक कलर या ब्लू कलर, तो कई बार

0: लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं वो एकदम से आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए जिस टैबलेट के ऊपर लाइन है उसको आप तोड़ के खा सकते हैं, वो भी डॉक्टर के हिसाब से, और अगर जिस पे कोई लाइन नहीं है उसको डायरेक्टली लीजिए, वो अपने आप टाइम से प्रोसेस करेगी। और जो भी आपको दिया है कि 5 दिन खानी है या 4 दिन खानी है या 3 दिन खानी है या 1 वीक खानी है, जो भी टैबलेट का टाइमिंग दिया हुआ है उसको रेगुलर लीजिए, एक दिन भी नहीं छोड़िए, बिल्कुल ब्रेक नहीं लीजिए। और कई बार हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि हर दिन कोई बीपी की टैबलेट या शुगर की टैबलेट उसको अच्छे से लीजिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना, कुछ खाना उसके बाद लीजिएगा। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:15 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और इतने सारे मैसेजेस मैं तो मॉर्निंग में सोच रही हूँ किसके पढ़ पाऊंगी और किसकी नहीं, पर फिर भी कोशिश करती हूँ जितने पढ़ सकूंगी। रेखा जी साथ दे रही हैं, अपने बेटे अंश के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, बिल्कुल चलाएंगे। कृष्ण रघुनाथ जी हैं सुरीनाम से, जो कि अपनी वाइफ माला और अपनी बेटी जिया एंड्रिया के लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सरोज राजन, मोनिका पूनम, उमेश अर्शी कथुबोन से साथ जुड़े हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ज्ञान बिहारी जी, थैंक यू सो मच। अपनी वाइफ सबीता सिस्टर इन लॉ गीता संजीव के साथ इंजॉय कर रहे हैं। वृंदा बंगारू जी रोजबेल से, जो कि उनका आधा मैसेज आया, सो सॉरी, कोई बात नहीं, आप फिर से लिख दीजिएगा, हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर पढ़ेंगे। मिसेस लाल दे सुया बिहारी कोंगमा से, वो भी साथ दे रही हैं। ललिता जी साथ दे रही हैं, ललित जी USA से साथ दे रहे हैं और अपने सभी स्टाफ के साथ में गानों को और प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। दोतिका रघुजना परिवार इंजॉय कर रहे हैं साथ में हैं। हेमलता भुजन जी अपने परिवार के साथ हैं और सॉन्ग्स को इंजॉय कर रहे हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है। रेखा नुनकू जी भी बहुत साथ दे रही हैं, रेशमा पूरे परिवार के लिए साथ दे रही हैं और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। अब्दुल सायरा बानो जी भी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। दरन श्वेता, रवीश, प्रिशा, लुवेशा भी साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सूरज शर्मा, साजदा जी भी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। एक प्यारा सा गाना मांग रही हैं वीना जी, जो कि अपने पूरे परिवार के लिए और उनके हस्बैंड ने ये मैसेज किया है बट अपना नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। कमलदीप जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। प्रमिला जी भी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। और उषा जी, जो कि रिया हमारी RJ, जो कि मॉर्निंग में हमेशा आपका साथ देती हैं, वो भी साथ हैं और कह रही हैं अभी रिया की शादी हुई है तो उनको बहुत विश कर रही हैं। उनको कह रही हैं हमेशा खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, जब जब तुमको देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि तुम कितनी खूबसूरत और प्यारी हो। क्या बात है भाई, चाची का ऐसा प्यार, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और हम भी पूरी MBC की टीम की तरफ से उन्हें विश करते हैं, उनके इस कपल को हमेशा खुश रहें, एंजॉय करें ये वाला गाना।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रीय सभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम उसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार उन पर बढ़ता कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा है। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने कल एमवी अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम इसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही अब कोई आरोपी अपने विवाहित होने या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। सरकार सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जता रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार उन पर बढ़ता कर्ज राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा है और वित्तीय अनुशासन बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। जून 2026 के आखिर तक 5 सरकारी संस्थाओं पर कुल 18.6 बिलियन रुपए का कर्ज था, जबकि 20 सरकारी कंपनियों पर कुल 48.9 बिलियन रुपए का कर्ज बताया जा रहा था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई सार्वजनिक विभाग पुनर्गठन योजनाएं तैयार कर रहे हैं। मंत्रालयों और सार्वजनिक एजेंसियों के अंतर्गत अपव्यय और अक्षमताओं की पहचान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता पर एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। सांसद रविंद्र जगन्नाथ के एक प्रश्न पर कल प्रधानमंत्री ने ये जानकारियां दी, उनको सुनते हैं।
1: The House will recall that the state of the economy document prepared by the Ministry of Finance.
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर विराम गुलाम ने कहा, सदन को स्मरण होगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दस्तावेज में कई अर्ध सरकारी निकायों तथा सरकारी कंपनियों की चिंताजनक वित्तीय स्थिति को उजागर किया गया था। इन संस्थाओं पर लगातार बढ़ता भारी ऋण तथा इनके कारण सरकार पर बढ़ती संभावित वित्तीय देनदारियां, खासकर उनके पेंशन फंडों में संचित उच्च बीमांकित घाटे के कारण देश की सार्वजनिक वित्त की स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया कि कई वर्षों तक अपर्याप्त वित्तीय निगरानी और ऋण पर बढ़ती निर्भरता ने सरकारी वित्त पर भारी दबाव डाला। इसलिए बजटीय अनुशासन बहाल करने, सुशासन को मजबूत करने तथा इन संस्थाओं की वित्तीय क्षमता और लचीलापन बढ़ाने के लिए निर्णायक सुधारों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार जून 2026 के अंत तक 5 अर्ध सरकारी संस्थाओं पर कुल 18.6 बिलियन रुपए का ऋण था। इनमें से 15.4 बिलियन रुपए कमर्शियल बैंकों से तथा 3.2 बिलियन रुपए अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में अर्ध सरकारी संस्थाओं का ऋण दुगने से अधिक बढ़ गया। ये दिसंबर 2014 के अंत में 6.2 बिलियन रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत तक 15.9 बिलियन रुपए हो गया। केवल पैसे दिए जा रहे थे, कोई नियंत्रण नहीं था, कोई वित्तीय दायित्व नहीं था। इस वृद्धि का मुख्य कारण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय आवश्यकताएं थी, जिसका ऋण 3.4 बिलियन रुपए से बढ़कर 10.3 बिलियन रुपए हो गया। इसी प्रकार एसटीसी का ऋण 1.1 बिलियन रुपए से बढ़कर 5.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। अर्ध सरकारी संस्थाओं और सरकारी कंपनियों के ऋण में हुई ये महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्ववर्ती सरकार में पूर्ण वित्तीय अनुशासन की कमी और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को नियंत्रित करने में उसकी प्रणालीगत विफलता के परिणामों को दर्शाती है। ऋण के इस संचय

ने सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ाया है, प्राथमिकता वाले निवेशों के लिए उपलब्ध बजटीय गुंजाइश को कम किया है और राज्यों को वित्तीय जोखिमों, खास रूप से संभावित देनदारियों के प्रति अधिक

0: अन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कुल 14.4 बिलियन रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ी। यदि सुप्रकाश बंगोल स्कीम के ग्राहकों को भुगतान करने के लिए लगाए गए धन को ध्यान में रखा जाए तो एमएसएम के शासन के दौरान कुल 11.5 बिलियन रुपए की सार्वजनिक धनराशि लगाई गई। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पुराने बीएआई समूह को समाप्त करने के जानबूझकर लिए गए कठोर निर्णय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके सुशासन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बचाव योजना के लिए सार्वजनिक धन का एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर लिए गए उनके फैसलों का सार्वजनिक ऋण पर सीधा प्रभाव पड़ा, यही सच्चाई है।
1: One single rupee from public funds would be injected into any bailout activity. Blinded by the political vendetta, their action led to a direct hit on the public sector debt. This is the truth, Madam Speaker.
2: जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2024 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राष्ट्रीय सभा में कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 697 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि कुछ खतरनाक हथियारों के बनाने, बेचने और व्यक्तिगत रूप से रखने पर देश में पहले से ही कानून के तहत रोक या नियम लागू हैं। उल्लंघन पर 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जोखिम वाले इलाकों में नियमित रूप से खास ऑपरेशंस चलाती हैं। इस साल जनवरी से जून महीने के बीच खतरनाक हथियार रखने के 65 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय सभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि भारत की तरफ से प्राप्त ग्रांट से 19 मिलियन रुपए रोड्रिक्स में मूल ढांचा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजना के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। ये रकम भारत की तरफ से 2022 में दी गई कुल 400 मिलियन रुपए के ग्रांट का हिस्सा है। इसमें शामिल परियोजनाएं और उनके पूरा होने की तारीख की सूची कल सभा में पेश की गई। अभी तक 18.4 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भारत ये फंड रीइंबर्समेंट के आधार पर जारी करता है। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कल एमवी अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पिछले हफ्ते उतारे गए 547 मवेशियों की स्थिति पर जानकारियां दी जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से पता चला है कि पर्याप्त चारा न मिलने के कारण समंदर में इंतजार के दौरान एक जानवर की मौत हो गई थी। शनिवार को खास ट्रकों के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जानवरों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। और एक और संवेदनशील पहलू खून के सैंपल के साथ जुड़ा है जिसके प्रारंभिक नतीजों की पुष्टि अब दक्षिण अफ्रीका की एक रेफरेंस लेबोरेटरी से की जानी है। कृषि उद्योग मंत्री ने कहा कि इस स्तर पर किसी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल है। उनके अनुसार इस मामले में बायोसुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है। शैलिनी अबन, सुमेर अकबर अली।
3: And one of Ulysse Manzani would have parce que c'est l'art and force d'appeler. Et si le gouvernement partait agir, ajuster le respect du welfare des animaux.
0: अगर सरकार पशुओं की भलाई के पक्ष में कदम नहीं उठाती और दूसरे खतरों को कम करने का फैसला लेकर जानवरों को क्वारंटीन में नहीं भेजती तो पता नहीं क्या होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य के निदेशक के मुताबिक काफी वक्त से इन जानवरों को खाना नहीं मिला और पानी की भी समस्या थी। अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पशुओं में बीमारी का कोई संकेत नहीं है, लेकिन अभी दक्षिण अफ्रीकी प्रयोगशाला के ब्लड टेस्ट नतीजे से पुष्टि करनी बाकी है।
2: असल में जुलाई महीने की शुरुआत में

0: एमवी एपेक्स जहाज को मॉरिशस की समुद्री इलाके में 300 किलोमीटर की दूरी पर रहने का आदेश दिया गया था। बाद में परिहार्य परिस्थितियों और जानवरों की कल्याण के आधार पर उसी मवेशियों को उतारने की विशेष अनुमति दी गई, इस शर्त पर कि आयातक सभी स्वच्छता संबंधी शर्तों का पालन करने की लिखित जिम्मेदारी ले। तेवीन सेतानेन मामले की जांच अभी भी सस्पेंडेड है। कल क्यूबिप की अदालत में सेंट्रल सीआईडी की इंस्पेक्टर सी बालक ने एक बयान में बताया कि पुलिस अभी भी टेलीफोन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए जज के आदेश का इंतजार कर रही है तथा कथित मेनलो पार्क मामले में तेवीन सेतानेन पर ICTA के तहत अस्थायी आरोप दर्ज है। पिछले साल जनवरी महीने में DPP दफ्तर में दायर की गई मांग अभी भी लंबित है। जांच में हुए विकास का जायजा लेने के लिए मामले को अगले 5 नवंबर के लिए स्थगित किया गया है। ज्यादा आसान और तेज होने के कारण ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनती जा रही है। हालांकि इसको लेकर कई जोखिम पाए जाते हैं। जनता की तरफ से प्राप्त कई शिकायतों, जरूरी सावधानियों और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट अब ऑनलाइन खरीदारी के नियमों पर फिर से गौर कर रही है। जनता से ऑनलाइन खरीदते हुए कुछ विशेष सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। नियमा की रिपोर्ट पर सुमेरा अकबरेली का विवरण।
1: जब हम एक ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और अगर हमें कोई मसला है तो अगले दिन ही अधिकारी व्यापारी का पता लगा सकता है। ताजदार यानी व्यापारी के पास एक बिजनेस एड्रेस होना चाहिए ताकि जब अधिकारी या कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट के अफसर उनके व्यवसाय में जाना चाहें और समस्या के बारे में पता लगाना चाहें और जांच करना चाहें तो वो एक स्थल पर जा सकते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं तो आप अपनी बैंकिंग जानकारियां ना दें। ये भी आश्वासन होना चाहिए कि आपको कहां कौन सा सामान बेहतर दाम में मिल रहा है। लोग शिकायत करने के लिए हॉटलाइन 185 पर हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं या हमें ईमेल भेज सकते हैं। याद रहे, खरीदारी के सभी सबूत होना चाहिए।
0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हुती गुट ने सऊदी अरब की बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी है। ये तनाव अमेरिका के नए हमलों, सेना को हो रहे नुकसान और मीडिएटर्स के जरिए लगातार जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच बढ़ा है। चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान उत्तर पूर्व में बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। सरल प्रातु पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। शाहिदी इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:44 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:49 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और शाम तक उसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन पारित करता है। सरकार सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। वित्त मंत्रालय के अनुसार उन पर बढ़ता कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए खतरा है। कृषि उद्योग मंत्री ने कल एमवी

अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिया हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। समाचार सुनिए। रॉयल रोड प्लान मानियों में 74 साल की 74 years old श्रीमती शांति मोहन, जो देवरानी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके भतीजे श्री प्रकाश मोहन के मकान रॉयल रोड प्लान मानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डिया 3 PM। रॉयल रोड कॉन्डोमास पावे में 86 साल के 86 years old श्री रोहित गुंजौ, जो और के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले टैक्सी चालक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके बेटे श्री दीप विजय हीरो गुंजौ के मकान रॉयल रोड कॉन्दमास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोवालों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डिया 3 PM। सिबालक लेन ग्लैन पार्क में 72 साल के 72 years old श्री मोहन सोमरा जो देव तातु नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे ऋषि सोमरा के मकान सिबालक लेन ग्लैन पार्क वाकवा से उठाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड डिओ शेत्या उर्ज में 73 साल की 73 years old श्रीमती राजवंती रामबन पैदाशी नाम जगर सिंह, जो राजवान नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पति श्री धनेश रामबन के मकान रॉयल रोड लियो शेत्या उर्ज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाली देपद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डिया 2 PM। एवेन्यू डोडो लेस्पेरांस पीटों में 80 साल की 80 years old श्रीमती धर्मनवती सुब्रायन पैदाशी नाम रामुदू, जो लक्ष्मी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे श्री सिगान्ना सुब्रायन के मकान एवेन्यू डोडो लेस्पेरांस पीटों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारोमोटे लेस्पेरांस पीटों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डिया 1 PM। लतापी रोड ब्रिजे वैद्यमी 50 साल के 50 years old श्री संजीव रामजतन जो बॉब नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान लतापी रोड ब्रिजे वैद्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे एट नून। मोजॉग गली बाची मारे में 79 साल के 79 years old श्री गोइन सामी सामिनादेन जो मुगो नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे श्री सामी सामिनादेन के मकान मोजॉ गली बाशिमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रॉयल रोड सेंट जूलियन विलेज में 75 साल की 75 years old बीबी अफरोज करीमन

0: करीमन जो अफरोज नाम से ज़रा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे इनका जनाजा सुबह 10 बजे इनके भाई जनाब डॉक्टर अब्दुल महबूब करीमन के मकान रॉयल रोड सेंट जूलिया विलेज से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए सेंट जूलिया विलेज की नूर मदीना मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए बोबा लामाती का कब्रस्तान फ्यूनरल स्टूडियो 10 AM। बयाश मोतालोंग में 77 साल की 77 years old श्रीमती सीता रघुबर जो इंदिरा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के 11 बजे केयर थे आज दिन के 11 बजे इनकी बहन श्रीमती सोनी रघुबेर के मकान बयाश मोतालोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू दिया 11 AM। सीमेटियर रोड मोचीदा में 73 साल के 73 years old श्री राम गुगोन जो चंद्रसेन नाम से ज़रा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री केविन गुगोन के मकान सीमेटियर रोड मोचीदा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिन कौंदेमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे 8:01 PM। स्कूल लेन त्यारूज में 67 साल के 67 years old श्री कृष्णा मेनन मुथुस्वामी जो गोविंद नाम से ज़रा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज सुबह दस बजे के मकान स्कूल लेन त्यागूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू दिया 10 AM। माता बदल रोड बोनाकवे में 47 साल की 47 years old श्री सूरज लक्ष्मण जो दीपक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बस चालक थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पिता श्री भन्नु लक्ष्मण के मकान माता बदल रोड बोनाके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदे पपाई में 70 साल के 70 years old जनाब नासीम अकबर अली जो नासीम नाम से ज़रा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनकी बीवी मिसेस आशा अकबर अली के मकान नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदी पपाई से उठाकर दफनाने के लिए वहीं का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू दिया 2 PM। नंबर 23 डॉक्टर प्यारो स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में 55 साल के 55 years old श्री धीरज रामधनी जो चीकी वी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे लाशा पहला दौंत मुआ पीछी तरबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 1 PM। रेजिडेंस सत्यावती पाइडेगाडू गांधी रोड लेस्पेरेंस कोचे मिलिटेर में पचास साल के 50 years old श्री वीरा मोगेन जो वीरा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती कामिनी रेशमा मुरुगन के मकान रेजिडेंस सत्यावती पाइडेगाडू गांधी रोड डिस्पेरेंस कोचे मिलिटेर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लागेमान सैन पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

इसी के तहत आज का राइज एंड शाइन यहीं तक आपका साथ हमेशा इसी सुबह को और भी खास बना देता है। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर भी मुलाकात होगी नई सुबह और पुराने सुनहरे गीतों के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा वेदिता का।

0: सुबह के 7:03 हुई है, वनडे 22nd of July। चलिए अब खुशियां की बात चली है तो खुशियां बटोर ही लेते हैं, हम तो आते ही इसलिए हैं कि ये खुशियां जो है आप पर हम क्या करें, बस आप पर हम उड़ा सके।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: पूनम कह रही है उड़ाना क्या होता है, निछावड़ होता है ना। हाँ वही होता है, कभी कभी हो जाता है, डोंट वरी, ऐसा रोज होता है। स्पेशली जो लोग मॉर्निंग में इस सर्दी के मौसम में उठ नहीं पाते हैं ना, तो उनका दिमाग जो है ना कहीं अटक जाता है, और ये अटकना तभी रुकता है जब आपके सामने गर्मा गर्म चाय जिसमें इलायची हो, कुछ लोग अदरक पसंद करते हैं, और कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, कुछ लोग बैठ के मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अभी उठा के मुझे किचन में फेंक के बोलेंगे जा जितने बोल रहे हैं ना उतना बना के ले आ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो विंटर की मॉर्निंग्स होती है ना, ओ माय गॉड, मैं सच कहती हूँ, मैं रोज़ आती हूँ, मैं खुश होके आती हूँ। आप लोग सोचते हैं ना कि ये लड़की हमेशा कैसे खुश होती है, पता है मॉर्निंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नोटिस करते हैं। आज तो पहाड़ भी जैसे हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रहा है, हाइड एंड सीक। मैं बोल रही हूँ कि तू कहाँ, आवाज़ तो आ रही है मैं यहाँ, लेकिन दिख नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बादल से घिरे हुए हैं। और मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी खूबसूरत सनराइज़, इतनी खूबसूरत ये मौसम, ये जो आप आसमान देखते हैं ऐसे कलरफुल, मैं बस बात करती रहूंगी, आप देखोगे नहीं, थोड़ा बाहर जाके देख तो लो, मैं तो हूँ यहाँ पे 9 बजे तक आपके मॉर्निंग बीट में।

0: ak moman enpòtan de zòt la vi. Nou ekstra happy trouv zòt tou les jou konekte, grandi, epanwi. E ansanm, nou pe kontinye. Kontinye koze, riye, pataze, sote, pile, danse, amize, reve, vibre. Zodi, nou anko pli konfyan pou di me. Kote sak nouvo teknolozi ki nou pou amene pou fè sak morisyen viv ban l'eksperyans anko pli mighty seye. E se ki si, nou pou la mem a zot kote. Zodi, di me, viv li avèk mighty.
1: RM2
2: Radio Musti
1: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: ओ जी हम आए और खाली हाथ आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता म्यूजिक के साथ साथ हम आपके लिए वजह ढूंढ लाते हैं मुस्कुराने की और आपके होंठों में मुस्कुराहट हम लेकर आएंगे इस मुस्कुराहट का आप लाफ्टर ले लो भाई क्योंकि यहां अब आपके लिए लेकर आए हैं एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है 25 जुलाई 2026 शाम 7:30 बजे SBICC पाई में अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई हमें मौका मिल जाता है इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने का हां हां 850 से टिकट शुरू होते हैं आप बाय कर सकते हैं muchike.mu या rizotayo पर और रिजर्वेशन के लिए हॉटलाइन नंबर है 466-9999 जल्दी कीजिए इससे पहले कि देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए सारे टिकट बिक जाएंगे फिर आप ढूंढते रह जाओगे चलो अगर आपको हम मौका दें इनाम जीतने का एक टिकट जीतने का तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए हमने आपसे काफी सारे सवाल पूछे थे अभी मुझे यह बताइए अभिजीत दा ने एक दूसरे सिंगर्स के साथ उन्होंने लॉन्च किया था एक एल्बम लाइक दिल विल प्यार प्यार उसमें ट्रिब्यूट किस म्यूजिक डायरेक्टर को दिया गया था जी हां दिल विल प्यार प्यार में किस म्यूजिक डायरेक्टर को अभिजीत ने ट्रिब्यूट दिया था आपको मुझे बताना है ऑन 5491294 पर याद रखिए पूरे नाम और पते के साथ नाम और पते के साथ हां मिस्टर इंडिया मत बनना और बहस करना बंद करो वहां पे डिसाइड करो कि जवाब क्या है और जल्दी से भेजो 5191294 पर

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: मैं गाना गा रही थी ओली ओली ओली ओली ओली ले ले क्या ले ले टिकट हमारे पास देने के लिए वही लेने के लिए मैं बोल रही थी क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मैसेज आए हैं इतने सारे। मैं यहाँ पर लकी ड्रॉ करने के लिए एक नाम लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद 5 और आ गए, फिर उसके बाद 10 और आ गए, फिर उसके बाद मैं वेट करती रही लास्ट मिनट में। चलो अभी सारे नाम हमारे पास हैं जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया है, और सब ने ही सही जवाब दिया है। अब किसने क्या जवाब दिया है मैं आपको बताती हूँ। हमने आपसे सवाल तो किया था, हमने आपसे बोला था कि दिल विल प्यार प्यार डेडिकेटेड है एक बहुत ही जाने माने बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर को, और वो है आरडी बर्मन। जी हाँ, आरडी बर्मन एंड हिज कंपोजिशंस टू किशोर कुमार। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और सही जवाब देकर विनर बना है कौन, चलिए ये भी जान लेते हैं। ऑलराइट, तो लकी ड्रॉ हो गया हमारा, और यहाँ पे नाम आया

0: निशा इस सर्बिया चमन का जो रहते हैं लातुकेनिका। ओके सो राइट आंसर भेजा है आपने। आपको मैं बताऊं, आपको मिल रहा है एक टिकट टू द गोल्डन 90s इरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे ऑफ 25th ऑफ जुलाई 7:30 PM SBICC पाई में हो रहा है। तो हमारे साथ इन गोल्डन इरा को जीने के लिए, लम्हों को यादगार बनाने के लिए आप ज़रूर वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो टिकट मिल गया है ना। और बाकी जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम क्या करें, अरे भाई टिकट स्टार्ट होता है 850 रुपीज़ और अवेलेबल है mochike.mu और गेजो तायु पे, तो देर किस बात की है, जल्दी से जाओ अपने टिकट को रिजर्व करो, कॉल करो। हॉटलाइन नंबर दे रहे हैं हम 4669999। सो मैं आपको बता दूं रजनीश, आपको आना पड़ेगा MBC अपने ID कार्ड के साथ अपना टिकट कलेक्ट करने सुबह 9 और सुपहर के 3 बजे के बीच, ठीक है।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
1: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu baignes de parfum? Tu l'auto aussi baignes de parfum? Tu sale des bains si baignes de parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandale à le kick? Et toi l'im sandale 24/7 toi?
3: Sen là, tu peux en trouver ça? Fic tes beaux que sen là.
1: À le kick gel air fresh no pocket size? Astier, me comprends. Tu mets air fraîche dans ton postement sportif.
3: Vrai, même tu bien comique, toi. Hein? Allez, essaye tout. Allo Kick, peinant ce deuxième sans bosser.
4: Allo Kick, freshness anytime, anywhere.
5: Problème légué, les baguettes léali. Les capaves, moi. Les capaves, toi. Les capaves, nous tous.
6: Protise tu légué, Zodi. Pour qu'il dit, mais tu pas à risque un bon problème légué.
7: Allo, enjoy to life avec Enke Life. Parce qu'il s'abondit les Enke Life là. Et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te man activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit les Enke Life. Mais là, te pébrons soin tous les guerres. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
8: Béala, Wednesday Bazaar, Logue et Côte Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans deux bonnes Winners.
9: Et promotion, bidoune balle. 500 grammes carottes pour 12,95 €. 500 grammes chouchou pour 6,95 €. 500 grammes mandarine pour 49,95 €. 500 grammes blanc, cuit sec, aile de poulet, frites pour 104,95 €.
8: Pas de prix là. Bazaar, Maudirou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
10: On est tous Winners!
11: Encore plus de millions, encore plus d'émotions. Ce soir, le loto affiche un jackpot estimé à 22 millions de roupies et le loto plus est à approximativement 31 millions de roupies. C'est plus de millions et plus de frissons. Le conseil, sérénité du loto. Inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes. Gardez votre sang-froid au volant pour les montées d'adrénaline. Il y a le jackpot.
12: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
1: RM2
2: Radio Musty. RM2
13: Radio Musty.
2: Feel the Musty.
0: अच्छा, जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, आप चाहे तो आप खुद मुझे अपना नंबर भेज सकते हैं, या तो फिर अगर आपके आसपास में आपको लगता है कोई जान पहचान का, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम, ताकि हम लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से उनको सरप्राइज़ कर सकें।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: हर बार तो पकड़ ही लेते हैं, फंस ही जाती हो। पता नहीं अगर ये सुन रहे हैं हमें, जानते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
3: जी,
2: हेलो सुनील संतक जी, हेलो नमस्कार। यस नमस्कार, नमस्कार। आप टैक्सी चलाते हो ना?
3: हाँ हाँ।
2: आप मुझे मौका छोड़ सकते हो प्लीज?
3: कब?
2: अभी 5 मिनट में।
3: नहीं नहीं नहीं,
2: कहाँ पे हो अभी आप? अभी आप कहाँ पे हो?
3: मैं गुजरात में हूँ।
2: तो मुझे तो 5 मिनट में पहुँचना है।
3: मैं नहीं सकती, नहीं नहीं सकती।
2: आप हंस क्यों रहे हो? आप हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो आप?
3: बोलो क्या बात है।
2: अरे

0: 5 मिनट में मुझे मौका पहुंचना है, मुझे किसी से मिलने जाना है, वाउचर लेने जाना है, इसीलिए मैंने कॉल किया।
1: आप मजाक कर रहे हैं ना?
0: मैं मजाक क्यों करूंगी, मेरे पास वाउचर है भाई लोलो हाइपर मार्केट का। आप मुझे छोड़
1: दो, बोलो क्या?
0: तो मुझे छोड़ दो ना मौका, वो राउंड अबाउट के पास जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, आप छोड़ दोगे मुझे वहाँ पे?
1: मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास पसंजे हैं अभी।
0: हाँ तो मैं काम के लिए बोल रही हूँ, आपको मुझे मौका छोड़ना पड़े। हाँ
1: पसंजे रेगुलर है ना?
0: हाँ तो मैं भी, तो मेरे पास तो कोई मुझे किसी को नहीं जानती, वो मुझे क्या नाम है उसका, बिंदिया और सोना कालू है ना, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है, बोला कि
1: रेडियो में बोला रेडियो।

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती.
1: तो आप रेडियो मस्ती पर है लाइव, और मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने आपको बोला आपको आना पड़ेगा. अच्छा, आप रेडियो मस्ती सुन रहे हैं. मुझे पता था आज मैं फंसने वाली हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द लव. मुझे नहीं पता आप लोग इतना प्यार देते हो हमारे रेडियो को, थैंक यू सो मच. सो यहाँ पर थैंक यू सुनील जी, थैंक यू. उन्होंने बोला मामू को कुछ सरप्राइज करो ना, मैंने कहा चलो मामू को मामू बनाते हैं, लेकिन मामू ने तो मुझको ही मामू बना दिया. तो सुनील संतक जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको. मैं आपको बताऊँ, लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से ये सरप्राइज होता है एवरी डे, और आज आप हमारे बर्थडे बॉय बने हैं. तो आपको मिल रहा है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर, जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा एमबीसी, आज नहीं तो कल. देखो इधर आ ही जाओ, टैक्सी में ही हो तो आ ही जाओ, अपना जो आईडी कार्ड है उसके साथ आना, और अपना जो वाउचर है वो कलेक्ट कर लेना. 9:30 बजे से सफर के 3 बजे के बाद आपके पास टाइम है, अगर आज नहीं तो कल आ सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन का ही आपके पास वक्त है, आज नहीं तो कल. सो हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत सारा प्यार है. थैंक यू, इतनी खुशी छलक रहा है आपकी खुशी आपके चेहरे पे. ऐसे ही खुश रहना, आपके सभी पैसेंजर्स की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे. ठीक है जी,
2: थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू, बाय बाय
2: बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.
3: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट. टक टक बॉलीवुड.

0: Blender, le Star Gold. Et nous la home, saison 3, le Netflix. Apportez-y 500 roupies par mois. App Canal Plus 5.
1: Canal Plus, c'est plus que vous ne l'imaginez. La plateforme qui réunit cinéma, séries, sport, telenovelas, Bollywood, mais aussi HBO, Netflix, le tout au même endroit.
2: Offre soumise à condition à Maurice. Modalité sur canalplus.com.
3: Dis maman, pourquoi tu mets toujours du Blue Band partout? Sur mes tartines et même dans mes pâtes?
4: Ah, c'est mon petit secret pour te voir grandir en pleine forme. Dans Blue Band, il y a des oméga 3 et 6, des vitamines A, D, B6 et B12. Ça te donne de l'énergie et la concentration nécessaire à l'école. Et puis, Blue Band apporte ce petit goût en plus qui fait toute la différence.
5: Blue Band fait toute la différence dans vos repas. Tartiner, cuire ou napper, Blue Band apporte les nutriments essentiels pour la croissance de vos enfants.
6: Blue Band, a spoonful of nutrition.
7: Moments that matter with Sicom.
8: आज हमर 2 करोड़ 11 बरिस होता, 51 होता। ये वो उम्र है जब इंसान पाछे घूम के अपन जिंदगी के तनी आर जस्ती से देखे लगीला। वो जवान छोकरा छोकरी याद आवेला, जे एगो जमाना में हमनी रनी जा। पहला कमाई के वेतन लिफाफा में बहुत जतन से रखल उ नोट, अपन घर बनाए के सपना, शादी लयका और उत्याग जिकर बारे में कोई नहीं आज ले बोलीला। हमर उ बखत याद आवेला जब लाकुजिन के लताब पर घर के हिसाब किताब करथनी। उ महीना अभी भी याद बा जब इ निर्णय लेके पड़ल रहल कि घर बनाए के या नवा गाड़ी किने के। आर उ पल जब अपन सूतल लड़का के देख के मन में खाली एक के गो बात ठन ले रनी, चाहे कुछ हो जाए ई लोग के कोनो चीज के कमती नहीं होई दे। फिर समय बीतले गल, लड़का आज बड़ा हो गए लंजा, माँ बाप बूढ़ा होई लग लंजा, जिम्मेदारी भी अपन रूप बदल दिली बाटी। और एक दिन एहसास होएला कि जीवन भी शादी निखन है जोन खाली निमन दिन के सहारे नहीं चलेला। ई में उतार चढ़ाव सब रहेला, ई चलेला एक दूसर के साथ निभैला से, विश्वास से, और उ इंसान के संगे जे बिना कोनो शोर शराबा करत हर बरिस हर दुख सुख में तोहर संगे खड़ा रहेला। उ तोहर पत्नी या पति हो सकी या फिर कबो कबो तोहर जीवन साथी भी, जिकर बारे में आप हरोश के शायद नहीं सोचिला। काहे कि उ बस हमेशा तोहर संगे बगल में खड़ा रहेला, जे तोहर बनावल हर एगो चीज के रक्षा करेला, तोहर सपना और जीवन के सब योजना में हाथ देवेला, आय होला काल के तैयारी में तोहर सहारा बनेला, और तब भी तोहर संगे खड़ा रहेला जब भविष्य निमन से नहीं रोकिला। एकदम एगो भरोसामंद बीमानिखन, एगो ऐसन संगतिया जेकर पर आंख मुन के विश्वास करी सकब। आजे तुहर पहला सपना सब बड़ा फैसला सब चिंता प्लान और आय होला कई गो पीढ़ी ले हर कदम पर तुहर संगे रहेला। सिकम की कहानी भी ऐसी है 51 बरिस के भरोसा की कहानी, परिवार, माँ बाप, लैका और आज लैका के साथ निभाते 51 बरिस होगल, सैकौतियनो होगल, समय बीतल गल आर सिकोम परिवार के एगो सदस्य जैसन बनकर। काहे कि सच ता एही है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत कहानी हमेशा विश्वास के कहानी रहेला।
7: It was moments that matter with Sicom.
9: VHCL spé débog coup de métrique. Depuis 17 jusqu'à 31 juillet, Vin profite bal méga promo l'ON grand sélection produit pour ou la case. Jusqu'à 50% discount l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et colas, brilla, flash net, promo là, extra. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
10: Histoire gagnante du loto. 28 janvier 2026, ticket gagnant 12,9 millions Tribeca.
11: Content, un petit peu choqué aussi. Moi, issu d'une famille modeste et on a tout à faire. Et voilà, aujourd'hui, donc finalement, l'univers, il m'a connu.
10: Des histoires gagnantes, des histoires vraies. Ferez-vous partie de la prochaine histoire gagnante du loto? Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
12: Encore. encore plus de millions, encore plus d'émotions. Ce soir, le loto affiche un jackpot estimé.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And ये समय हो गया है कि हम वेलकम करें हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद का और चलिए जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है स्पेशली ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने वाले हैं तो मिलते हैं अरविंद से गुड मॉर्निंग अरविंद
4: गुड मॉर्निंग आपको गुड मॉर्निंग आरएम2 लिसनर्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कल से ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हो रहे हैं इस बार 10 मुख्य स्पोर्ट्स और 6 पैरा स्पोर्ट्स होंगे एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स स्विमिंग पैरा स्विमिंग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स बॉल्स पैरा बॉल्स बॉक्सिंग जूडो नेटबॉल पैरा पावर लिफ्टिंग ट्रक साइकिलिंग पैरा ट्रक साइकिलिंग वेट लिफ्टिंग मॉरिशस 6 खेलों में है 40 एथलीट्स ग्लासगो में है बॉक्सर फैब्रिस वालेरी कल ओपनिंग सेरेमनी में चौरंगे के साथ आगे होगा ऑफिशियल कप्तान नोएमी अल्फोंस और विंसले गंगाया है कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें मेडल जीतने की उम्मीद है यूरोपियन चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग मैच भी खेले जा रहे हैं आज ओमोनिया निकोसिया का मुकाबला कायरात अल्माटी से लेवस्की सोफिया क्रालोवा और इग्नासिया सेलिए कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफायर्स भी जारी है कई टीम फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्रेंडली मैच फ्राइडे को होगा रोजनबर्ग के खिलाफ लिवरपूल संडे सुबह खेलेगा सन्डरलैंड के खिलाफ अमेज़न आदमी जेफ बेजोस लिवरपूल में इन्वेस्ट करना चाहता है एक कंसोर्शियम है जिसमें अमित शाह लिवरपूल के मालिकों से बात कर रहा है अमित भाटिया स्टील जायंट लक्ष्मी मित्तल का दामाद है क्वींस पार्क रेंजर्स से अपना पैसा निकालकर अब लिवरपूल में लगाना चाहता है ट्रांसफर बाजार में कारोबार जोर पकड़ने लगा है ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर फी 117 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी ने एस्टन विला से मॉर्गन रॉजर्स को साइन किया यूएसए से वापस आकर रॉजर्स ने मेडिकल पूरा किया और 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आर्सेनल भी रॉजर्स के पीछे था पर ट्रांसफर फी देखकर पीछे हट गया अब द गनर्स बाकोला और खुप्पी के पीछे टूपी नाच रहे हैं इतना ही नहीं चेल्सी बोर्नमूव से एलेक्स स्कॉट को भी साइन करना चाहता है 64 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बिड रिजेक्ट कर दिया गया नॉट फॉर सेल स्कॉट के कॉन्ट्रैक्ट में केवल 2 साल बचे हैं पर वो नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहता शुरू में आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर सिटी भी एलेक्स स्कॉट को टारगेट कर रहे थे इसी तरह बोर्नमूव जूनियर खुप्पी को भी नहीं बेचना चाहता लिवरपूल का नया मैनेजर चाहता है कि मैकालिस्टर और एलिसन लिवरपूल के साथ रहे एंटोनी इराओला इन दिनों प्री सीजन के लिए शिकागो में है उसने कहा वो अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ काम करना चाहता है इराओला ने स्वीकार किया कि लिवरपूल को एक दो और साइनिंग चाहिए खासकर डिफेंस

0: रॉयल्स में कोनाते चला गया, वैन डाइक का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल पूरा हो जाएगा। इधर मार्कुस राशफोर्ड को साइन करने के लिए टोटनहम हॉटस्पर, चेल्सी और आर्सेनल लाइन में है, पर खबर है मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले उसे प्रीमियर लीग के किसी राइवल के साथ नहीं बेचना चाहते। और साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के टाइम ट्रायल में कल इव निपोएल की जीत हुई, लीडर पोगाचार अब इव निपोएल से 4:32 आगे है, तो अभी काफी स्पेस है दोनों के बीच। इव निपोएल ने खुद कहा कि पोगाचार को पकड़ना मुश्किल होगा। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते फिर से बता दें आपको कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कल से शुरू हो रहे हैं। एली मॉरिस हमारे एथलीटों के लिए लाएंगे मेडल जरूर, क्योंकि खेलेंगे जी जान से। टेक केयर, बाय बाय।
1: ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: मैंने कहा गुड मॉर्निंग, वेलकम रेडियो मस्ती पर आपका स्वागत है। ये है

मॉर्निंग बीट विदिता के साथ और मैं साथ हूँ 9 बजे तक। अच्छा आप ये बताइए कि आप कहाँ तक पहुँचे? अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो बच्चे जो हैं घर पर हैं, आराम कर रहे हैं, दादा दादी बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। मेक श्योर कि बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है वो थोड़े समय के लिए थोड़ा उनके हाथ से निकल जाए और आपके साथ उनको एंगेज कर लीजिए। किचन में केक बना लीजिए या कोई अच्छा सा खाना जो उनको पसंद है, या उनके साथ कुछ सीख लीजिए। इससे क्या होगा ना कि बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और हम आपको खुश करेंगे ज़रूर। नेक्स्ट आवर में आ रहे हैं लेकर आपका अपना मॉर्निंग बीट। अभी फिलहाल के लिए अगले गाने के साथ बढ़ते हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर।

नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। राज्यसभा में काल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहस चलल आर सांझ ले एकरा पारित करल गल। विधेयक हाल ही में पारित होल डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करेला, एकर अंतर्गत महिला लोग के हत्या और वैवाहिक बलात्कार खातिर सजा आसक्त करे के प्रावधान बाटे। एकर संगे ही अब कोनो आरोपी अपन विवाहित होए के या धार्मिक स्थिति के बचाव के रूप में प्रस्तुत न करे सकी। सरकार सार्वजनिक संस्था और सरकारी कंपनी लोग के आर्थिक स्थिति के लेके चिंता जतावता। वित्त मंत्रालय के अनुसार लोग परी बढ़ल कर्ज राज्य के आर्थिक स्थिति के

0: खातिर एगो बड़का खतरा है और वित्तीय अनुशासन बहाल करे खातिर तत्काल सुधार की आवश्यकता बाटे। जून 2026 के आखिर ले 5 सरकारी संस्था पर कुल 18.6 बिलियन और जबकि 20 सरकारी कंपनी लोग पर कुल 48.9 बिलियन रुपया के कर्ज रहल। यही स्थिति के ध्यान में रख के कई गो सार्वजनिक विभाग लोक पुनर्गठन योजना तैयार कर थोंजा मंत्रालय और सार्वजनिक एजेंसी लोग के अंतर्गत अपव्यय यानी गलत खर्चा और अक्षमता के पहचान खातिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता पर ही संचालित समिति के गठन करल जाए। जनवरी 2021 से जुलाई 2026 के बीच पुलिस चाकू तलवार या अन्य धारदार हथियार से जुड़ल 731 अपराध की सूचना दर्ज कर ले रहल। राष्ट्रसभा में काल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ई जानकारी देलन। कमिश्नर ऑफ पुलिस देने से उपलब्ध आंकड़ा के मुताबिक गल 5 में इस सब घटना में 697 जना घायल होलन जा और 40 जना की मौत होल बा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम बतैलन कि एक आदगो खतरनाक हथियार बेचे के रखे के और बनावे के लेके देश में पहले से ही कानून के तहत रोक और नियम लागू बाटी। उल्लंघन पर 10 तक के कैद की सजा हो सकेला। वे भी बतैलन कि पुलिस जोखिम होला के इलाका पर नियमित रूप से खास ऑपरेशन चलावेला। ये बरिस जनवरी से जून 2 के बीच खतरनाक हथियार रखे खातिर 65 मामला दर्ज करल गेल है। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेलकाल MV अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से आनल गल जनावर लोग की संवेदनशील मामला पर ही प्रेस के संबोधित करलन। उ गल हफ्ता उतारल गल 547 गो मवेशी के स्थिति पर जानकारी देलन जेकरा क्वारंटीन में रखल गल है। डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से ई पता चलल बा कि पर्याप्त चारा नहीं मिले खातिर और समंदर में इंतजार के दौरान एगो जानवर के मौत हो गल शनिवार के खास ट्रक के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल की पालन करके ये सब जनावर लोग के क्वारंटीन केंद्र में भेजल गल है। और एगो संवेदनशील पहलू है खून के सैंपल जेकर प्रारंभिक नतीजा के पुष्टि अब दक्षिण अफ्रीका के एगो रेफरेंस लैबोरेटरी देने से देवल जाए। कृषि उद्योग मंत्री बोलन कि इस स्तर पर ही कोनो नतीजा ले पहुँचे खातिर आसान नहीं बाटे। उनका अनुसार ही मामला में वायु सुरक्षा सबले महत्वपूर्ण है। याद रखे के चाहिए कि जुलाई महीना के शुरू में MV अपेक्स जहाज के मॉरिशस के समुद्री इलाका में 300 किलोमीटर की दूरी पर ही रहे के आदेश देवल गल रहल। ओकर बाद परिहार्य परिस्थिति और जनावर लोग के कल्याण के आधार पर ही वो सब मवेशी लोग के उतारे के जहाज के विशेष अनुमति देवल गल। इस शर्त पर ही कि आयातक सब स्वच्छता संबंधी शर्त के पालन करी और वो भी लिखित रूप से। और दूसरा देश की खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर ले हुन कि ईरान पर ही हमला अभी पूरा नहीं होल बा। तनाव तब आठ बढ़ गल जब तेहरान गल्फ देश पर ही हमला कर लग और ओकर सहयोगी हुती गुट सऊदी अरब के बंदरगाह की घेराबंदी करे की धमकी देलक। तेरा भोजपुरी समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप

0: सुबह के 8:10 हुए हैं। वेलकम, स्वागत है आपका मॉर्निंग बीट के सेकंड आवर में। चलिए इसके साथ जान लेते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
2: ओनली टू विनर्स।
3: आम हालत हमारे इलाके पर, हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान उत्तर पूर्व में बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। रात के दौरान हल्के बादल घिरे रह सकते हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से

0: चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:44 पर सूर्योदय, शाम को 5:49 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Béala, Wednesday Bazaar, log et cote winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
4: Et promotion, bidoune balle. 500 grammes carottes pour 12 roupies 95. 500 grammes chouchou pour 6 roupies 95. 500 grammes mandarine pour 49 roupies 95. 500 grammes blanc, cuit sec, aile de poulet, frites pour 104 roupies 95.
3: Pas de prix là. Bazaar, Moudirou. Rendez-vous cote winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
5: On est tous winners.

दोस्तों क्या परेशानी है, क्यों इतने उदास रहते हो, क्यों इतने चिड़चिड़े से रहते हो? कल की टेंशन और कल के सपने में इतना मत खो जाओ कि आज की खूबसूरती ही मिस हो जाए। जिंदगी वही है जो इस पल में जी जाती है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, हम अक्सर या तो पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर रिग्रेट करते हैं या फ्यूचर की वरीज में उलझे रहते हैं, लेकिन सच ये है कि सिर्फ आज का मोमेंट ही हमारे कंट्रोल में है। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर की

प्लानिंग ना करो, इसका मतलब ये है कि अपना बेस्ट आज दो, जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, छोटी खुशियों को नोटिस करो, हर मोमेंट को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करो बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। आज को इतना अच्छा बनाओ कि कल सिर्फ एक बोनस लगे। और इसी बात पे हैव अ पीसफुल एंड वंडरफुल डे।

चलिए जी, यहाँ पर समय हो गया एक बार फिर आपको हैप्पी, आपको खुश करने का। जी बिल्कुल, जिन्होंने स्पोर्ट्स मिस कर दिया 8:40 पे, मैं आपको बता दूं कि अरविंद के साथ हम लेटेस्ट अपडेट्स फिर से सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके लिए जो गेम लेकर आए हैं वो है क्या। जी हाँ, गेम क्या है कि मुझे बस आपको जवाब देना पड़ेगा मेरे सवाल का, और बदले में आपको मिलेगा 1 ticket टू द गोल्डन 90s era 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट सैटरडे 25 जुलाई को होगा 7:30 PM SBICC Pi। अभी तक अगर आपने टिकट नहीं खरीदा है तो मैं आपको बता दूं टिकट अवेलेबल है mujhke.mu एंड रेजो उतायो पर, और स्टार्ट होता है ओनली 850 rupees से। ओके, रिजर्व करने के लिए हॉटलाइन नंबर चाहिए 4669999। इट्स वेरी इजी, 4669999। ओके चलिए, तो मुझे बताइए कि कौन है जो हमारे साथ इन लम्हों को जीना चाहेगा, कौन है जो हमारे साथ इस 90s का जो गोल्डन ईरा है इसको फिर से एक्सपीरियंस करना चाहेगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे ये बताइए। जी हाँ, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मेरा सवाल है आपके लिए कि अभिजीत दा जो है मई 2019 में उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए एक गाना रिलीज किया था, उस गाने का आपको मुझे टाइटल देना है। जी हाँ, इन मई 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने एक गाना रिलीज किया था, वो कौन सा गाना है आपको मुझे बताना है ऑन 5491294।

0: ओले ओले, गाना खत्म हो गया? अरे क्या बात है, और विनर?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: सोचो ऐसे ऐसे हंगामे होने वाले हैं लाइव कॉन्सर्ट में जो होने वाला है 25 जुलाई 7:30 PM SBICC पाई में गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। तो इनका जो कॉन्सर्ट होने वाला है कुछ ऐसे कमाल के गाने होने वाले हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूट्स भी होने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि अभिजीत दा जो है वो किशोर दा के बहुत बड़े फ़ैन हैं और साथ ही साथ वो सभी जो आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी सारे ट्रिब्यूट होंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कहाँ हो भाई कहाँ हो, अगर रिजर्व करना चाहते हो अपना टिकट जो 850 से शुरू होता है mochike.mu गिजो तायो पे आप बुक कर सकते हो। हॉटलाइन नंबर है 4669999। ठीक है, ओके। तो मेरा सवाल था आपके लिए कि उन्होंने जो गाना रिलीज़ किया था, एल्बम रिलीज़ किया था May 2019 में फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप, गाना कौन सा था? गाना था चक दे फट्टे। जी हाँ, और वो वही करने वाले हैं इस कॉन्सर्ट में और सबको नचाने वाले हैं, सबको दीवाना बनाने वाले हैं और सबके दिल को जीतने वाले हैं। अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट 25 जुलाई 7:30 PM SBICC पाई। चलिए अभी विनर कौन है ये भी जानने का समय हो गया है, तो विनर का नाम भी देख लेते हैं। लकी ड्रॉ में कौन आया है? तो ये है ब्रिमोती फ्रॉम वाकवा। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, चक दे फट्टे। चलो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आपको मिल रहा है ये एक टिकट जो आपको कलेक्ट करने आना पड़ेगा MBC अपने ID कार्ड के साथ। मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह 9:30 और दोपहर के 3:00 के बीच में अपने ID कार्ड के साथ। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्सर्ट जहाँ पर आप अभिजीत दा को देख सकते हैं लाइव परफॉर्म करते हुए कुछ ऐसे।
3: चकाचौंध बम्बई, कुछ बनावटी कुछ सच्चाई, तुम्हारी गजलों के जरिए कुछ रोटी कुछ कमाई जो मैंने भी पाई। पाजी, मुझे संगीत की दुनिया में लाने वाले तुम ही हो, जो गीत तुम्हारे होंठों को छू लेता है वो अमर हो जाता है, वो है

0: to Radio Musty.
1: Et n'en cause qui dit, malé à peine à l'odeur. Il l'est temps pour qu'il nous prend soin de la santé. Et c'est pour ça que SICOM fin développe un nouveau assurance qui appelle SICOM Wellness Plan. Sa plan là inclut un test médical régulier et gratuit qui peut aider ou détecter un problème grave bien en avance. Et SICOM paye ou la somme assurée tout de suite en cas de diagnostic là, CAI. Ça peut permettre ou faire ou traitement avec un esprit positif. Et si vous ne faites aucune réclamation jusqu'à la fin ou contrat, SICOM rembourse ou somme assurée totalement. Plus d'informations sur SICOM Wellness Plan, contactez-nous au 203-8401, visitez-nous au SICOM.me ou contactez un nouveau représentant. Conditions applicables. SICOM opère sous licence de la FSC.
2: SICOM Group, a lifetime commitment.
0: RM2
3: Radio Musty.
0: A good beat for your morning show.
3: Come on.
0: RM2
3: Radio Musty.
4: Hey guys, I hope you're fine and अभी आप पहुंच भी गए होंगे ऑलमोस्ट अपने काम पे क्योंकि इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है ना क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी चल रही है घर पे अब घर पे बच्चे हैं बहुत सारे लोग भी घर पे हैं जब बच्चे घर पे होते हैं वो भी छुट्टी लेके घर पे होते हैं चलो अगर आपने मिस कर दिया हमारा स्पोर्ट्स अपडेट अरविंद के साथ तो हो जाए
0: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स
4: चलिए वाह ही गए तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग अरविंद

0: Good morning, Apo. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. 2026 के Commonwealth Games कल से ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हो रहे हैं। इस बार 10 मुख्य स्पोर्ट्स और 6 पैरा स्पोर्ट्स होंगे। एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, बॉल्स, पैरा बॉल्स, बॉक्सिंग, जूडो, नेटबॉल, पैरा पावर लिफ्टिंग, ट्रक साइकिलिंग, पैरा ट्रक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग। मॉरिशस 6 खेलों में है, 40 एथलीट्स ग्लासगो में है। बॉक्सर फैब्रिस वालेरी कल ओपनिंग सेरेमनी में चौरंगे के साथ आगे होगा। ऑफिशियल कप्तान नोएमी अल्फोंस और विंसले गंगाया है कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें मेडल जीतने की उम्मीद है। यूरोपियन चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग मैच भी खेले जा रहे हैं। आज ओमोनिया निकोजिया का मुकाबला कायरात अलमाती से लेव्स की सोफिया क्रालोवा और इग्नासिया सेलिये। कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफायर्स भी जारी है। कई टीम फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्रेंडली मैच फ्राइडे को होगा रोजनबर्ग के खिलाफ। लिवरपूल संडे सुबह खेलेगा संडरलैंड के खिलाफ। अमेज़न का फाउंडर, दुनिया का चौथा सबसे रईस आदमी जेफ बेजोस लिवरपूल में इन्वेस्ट करना चाहता है। एक कंसोर्शियम है जिसमें अमित शाह लिवरपूल के मालिकों से बात कर रहा है। अमित भाटिया स्टील जायंट लक्ष्मी मित्तल का दामाद है। क्वींस पार्क रेंजर्स से अपना पैसा निकालकर अब लिवरपूल में लगाना चाहता है। ट्रांसफर बाजार में कारोबार जोर पकड़ने लगा है। ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर फी 117 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी ने एस्टन विला से मॉर्गन रॉजर्स को साइन किया। यूएसए से वापस आकर रॉजर्स ने मेडिकल पूरा किया और 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आर्सेनल भी रॉजर्स के पीछे था पर ट्रांसफर फी देखकर पीछे हट गया। अब द गनर्स बाकोला और खुपी के पीछे टूपी नाच रहे हैं। इतना ही नहीं, चेल्सी बोर्नमूव से एलेक्स स्कॉट को भी साइन करना चाहता है। 64 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बिड रिजेक्ट कर दिया गया, नॉट फॉर सेल। स्कॉट के कॉन्ट्रैक्ट में केवल 2 साल बचे हैं पर वो नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहता। शुरू में आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टोटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर सिटी भी एलेक्स स्कॉट को टारगेट कर रहे थे। इसी तरह बोर्नमूव जूनियर खुपी को भी नहीं बेचना चाहता। लिवरपूल का नया मैनेजर चाहता है कि मैकालिस्टर और एलिसन लिवरपूल के साथ रहे। एंटोनी इराओला इन दिनों प्री सीजन के लिए शिकागो में है। उसने कहा वो अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ काम करना चाहता है। इराओला ने स्वीकार किया कि लिवरपूल को 1-2 और साइनिंग चाहिए, खासकर डिफेंस में। कोनाते चला गया, वान डाइक का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल पूरा हो जाएगा। इधर मार्कुस राशफोर्ड को साइन करने के लिए टोटनहम हॉटस्पर, चेल्सी और आर्सेनल लाइन में है पर खबर है मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले उसे प्रीमियर लीग के किसी राइवल के साथ नहीं बेचना चाहते। और साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के टाइम ट्रायल में कल इवनी पोएल की जीत हुई। लीडर पोगाचा अब इवनी पोएल से 4:32 आगे है, तो अभी काफी स्पेस है दोनों के बीच। इवनी पोएल ने खुद कहा कि पोगाचा को पकड़ना मुश्किल होगा। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते फिर से बता दें आपको कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कल से शुरू हो रहे हैं। एली मॉरिस हमारे एथलीटों के लिए लाएंगे मेडल जरूर, क्योंकि खेलेंगे जी जान से। टेक केयर, बाय बाय।
1: मॉर्निंग बीट।
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: to Radio Musti.
1: तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगे खड़ाबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिया या sikkim.mu पर जाइया। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: Bollywood

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई मैं तो ना ही बोलूं तो अच्छा है, मैंने बोलना शुरू किया तो फिर आपको डांस करने का मौका नहीं मिलेगा। चलो कोई नहीं, वेदिता का साथ है और हमारा प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती। अभी खूबसूरत गीतों का ये जो प्यारा सा हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, कोशिश हमारी आपकी लाइफ से जो टेंशन है उसको दूर करना। आई होप कि हम लोग कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं कि आपके होठों पे थोड़ी हंसी हम लेकर आते हैं। तो चलिए इसी के साथ टाइम कि हम आगे बढ़े हमारे गीतों के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड यहाँ पर हम उमावती छदी जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं उनकी नीस नीरा बाला की तरफ से, जो क्यूबिप से हैं एंड एक्चुअली अभी वो वैकेशन पे हैं इन मॉरिशस, तो उनको कहेंगे थैंक यू सो मच एंड खुश रहो और हमारे साथ म्यूजिक के साथ मस्त रहो।
0: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2
1: Radio Musti.

चलो जी, मेरे जाने का टाइम आ गया है और विकास के आने का, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल मॉर्निंग में 7 बजे कुछ ऐसे मूड के साथ। बस आप खुश रहना प्यार से। आए हाय।

0: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं अदिति, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते अदिति।
2: नमस्ते रत्ना, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय सभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम इसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ अब कोई आरोपी अपने विवाहित या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। जनवरी 2021 से जुलाई 2026 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राष्ट्रीय सभा में कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान ये जानकारियां प्रधानमंत्री द्वारा दी गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 677 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि कुछ खतरनाक हथियारों से के बनाने, बेचने और व्यक्तिगत रूप से रखने पर देश में पहले से ही कानून के तहत रोक या नियम लागू हैं। उल्लंघन पर 10 साल कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जोखिम वाले इलाकों में नियमित रूप से खास ऑपरेशंस चलाती हैं। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कल MV अपेक्स जहाज के जरिए

0: ये मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पिछले हफ्ते उतारे गए 547 मवेशियों की स्थिति पर जानकारियां दी, जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से पता चला है कि पर्याप्त चारा न मिलने और समंदर में इंतजार के दौरान एक जानवर की मौत हो गई है। शनिवार को खास ट्रकों के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जानवरों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। एक और संवेदनशील पहलू खून का सैंपल है, जिसके प्रारंभिक नतीजों की पुष्टि अब दक्षिण अफ्रीका की एक रेफरेंस लैबोरेटरी से की जानी है। कृषि उद्योग मंत्री ने कहा कि इस स्तर पर किसी नतीजे तक पहुंचना आसान नहीं है। उनके अनुसार इस मामले में बायोसिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसकी सहयोगी हूती गुट ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जी मार ली फिर से हमने एंट्री. 9:09 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग नमस्ते. मैं आ गई फिर से आपके साथ लेके बहुत सारा प्यार और बहुत सारे गाने और जो कि होने वाले हैं सुपर हिट बॉलीवुड सॉन्ग्स जो ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके साथ आ रहे हैं. और मैं शुरू करती हूँ आपका मस्ती मॉर्निंग जिस प्रोग्राम को बनाना है मस्त मस्त आपके साथ. मैं हूँ आपके साथ पूनम. तो हो जाइए तैयार, इंजॉय कीजिए अपने फेवरेट शो. और हाँ, अपने मैसेजेस भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा. 549912 94 पर एंजॉय कीजिए अपना मस्ती मॉर्निंग प्रोग्राम.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: दिया।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:19 हो चुके हैं और अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, ओ सुपरस्टार। तो अगर आपके अंदर भी एक प्यारा सा टैलेंट है, सुपरस्टार बनना चाहते हैं, अगर आपको लोगों को एंटरटेन करना पसंद है, तो फिर इंतज़ार किस बात का। बस 60 सेकंड्स का एक वीडियो बनाइए और व्हाट्सअप कीजिए 5251 6363 पर। हो सकता है आज तक आपने खुद को मौका ही ना दिया हो, आपको पता ही नहीं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। यही एक वीडियो है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। कौन जानता है कि आज आप MBC को अपना वीडियो भेजेंगे और कल आपको पूरा मॉरिशस, कहते हैं ना कि पूरा वर्ल्ड आपको पहचानेगा, आपकी आवाज को पहचानेगा। तो देर मत कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, जैसी भी है, जैसे आपको लगता है ना कि आप एंटरटेन कर सकते हैं, आपके अंदर एक टैलेंट है जो छुपा हुआ है, तो आपने बस बनाना है वीडियो। बाकी MBC पे छोड़ दीजिए, 60 सेकंड का वीडियो हो सकता है आपका कमाल कर दे और आप हमारे साथ बैठ के सीखें और हमें भी सिखाएं आपका एंटरटेनमेंट कैसे आप कर पाएंगे। तो इंजॉय कीजिए अपने गानों को, पर हमारे को वीडियो भेजना बिल्कुल मत भूलिए। इंजॉय कीजिए ये गाना।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio. Musty.
2: 9:28 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। भाई हम आते हैं आपके लिए मस्ती करने, आपको मस्ती कराने, और आपको बस इतना ही कहते हैं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पर एक बात कहूँ, हमारी आजकल की जो बहनें हैं ना, जो हमारी जो बस में जा रही होती हैं और जो मेट्रो में जा रही होती हैं, पता नहीं ना जाने उनको क्या हो गया है। घर से निकलते वक्त सबका ध्यान रखती हैं, बड़ों का ध्यान रखेंगी, पूछेंगी, चाबियाँ लेके जाएंगी, गैस चूल्हा सब कुछ ऑफ करेंगी, ब्रेकफास्ट की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर को बिल्कुल नीट क्लीन करके रखेंगी, बट अक्सर एक चीज साथ में लेके जाना भूल जाती हैं, वो है उनकी मुस्कुराहट, वो है उनकी स्माइल। कहाँ चली जाती है, क्यों थक जाते हैं आप? अगर आप थक गए हैं फिर भी अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका मूड अच्छा रहता है, रिफ्रेश रहता है, और जो आपको देख रहा होता है आपको एहसास नहीं होता कि आपको कौन कौन देख रहा है, पर एहसास होना चाहिए। अगर स्माइल है आपके चेहरे पर, आप बिल्कुल सिंपल भी लग रहे हैं ना, तो आप यूनिक लगेंगे, बहुत स्मार्ट लगेंगे, कॉन्फिडेंट लगेंगे। पर अगर आपके पास स्माइल नहीं है तो फिर ऐसा पूरा दिन ऐसा सुस्त सा निकल जाता है, आपको खुद ही एहसास होता है अरे काम पे जाना है, थकना है। ऐसे नहीं करने का, स्माइल लेके जाइए, बहुत ज़रूरी है। पॉकेट में नहीं डाल के लेके जाइए, चेहरे पर लगा के जाइए, चिपका के जाइए। चलिए भैया धूम मचाते हैं, क्योंकि हम तो आपको मजाक कराना है हमने आपको कि आपने जो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं, कुछ लोग पहुंच गए होंगे बट बहुत सारे लोग अभी भी जा रहे होंगे, तो बस क्या करना है आपको, स्माइल अपने चेहरे पर रखनी है। You can find me in the club,
1: bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty. Your daily horoscope. RM2. Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ पूनम। एक नई सुबह, एक नई किरण और 24 घंटे आपके नाम। तो चलिए देखते हैं आज आपकी राशि के लिए सितारों ने आपको कौन सी प्यारी सी बात भेजी है। सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज मेष राशि। आज आपकी रफ्तार सही दिशा पकड़ सकती है। एक छोटी सी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है। खुद पर भरोसा रखिए, दिन आपका साथ देगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 8।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज दिल को सुकून देने वाले पल मिल सकते हैं। किसी अपने से अच्छी बातचीत खुशी देगी। आराम से चलिए, सब ठीक होता जाएगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपका अंदाज लोगों का दिल जीत सकता है। नई सोच आपको आगे बढ़ाएगी। मुस्कुराहट हर मौके का स्वागत कीजिए। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज घर और परिवार से अच्छी ऊर्जा मिलेगी। किसी की एक प्यारी सी बात आपका दिन बना सकती है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। एंजॉय कीजिए अपना दिन। इसलिए लकी कलर बनेगा आज आपका व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपकी मौजूदगी ही आपकी ताकत बनेगी। जिस काम की शुरुआत करेंगे उसमें अच्छा साथ मिलेगा। आत्मविश्वास बनाए रखिए। लकी कलर है गोल्ड, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज खुद को थोड़ा हल्का रखिए। हर बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे पल आपका इंतजार कर रहे हैं। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
2: लीब्रा तुला राशि।
1: आज किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह बनिए। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। दिन और दिल को सुकून मिलेगा। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज आपका हौसला नई राह दिखा सकता है। जो ठानेंगे उसे पूरा करने का जज्बा रहेगा। खुशखबरी मिलने के पूरे पूरे संकेत हैं। तो लकी कलर है आपका मेहरून, लकी नंबर है 9।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज कुछ नया देखने या सीखने का मौका मिल सकता है। अपनी अच्छी एनर्जी सबके साथ बांटिए। दिन यादगार बनेगा। लकी कलर बनेगा पर्पल, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज मेहनत की चमक साफ दिखाई देगी। हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। दिन संतोष से भरा रहेगा। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपकी अलग सोच सबको चौंका देगी। आपकी पहचान बदल देगी। अपनी बात पर पूरे विश्वास से रहिए। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज दिल खुश रहेगा और मन हल्का महसूस होगा। अच्छे लोगों का साथ दिन को और भी खूबसूरत बना

0: बना देगा। हर पल को मुस्कुरा कर जिए, लकी कलर बनेगा सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो दोस्तों याद रखिए, अच्छी सुबह सिर्फ सूरज नहीं बनाता, आपकी सोच भी बनाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस से जाएं, कहीं पे जाएं। मैं हूं आपके साथ पूनम, ये था आपका आज का राशिफल। एंजॉय कीजिए आपके और गाने।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. You can find me in the club, bottle full of bub. My mind got. You're listening to Musti Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:55 हो चुके हैं. रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ रहता है. कार्तिक कीर्ति एंड दिलजीत एंड निकिता प्रीतम कुमार रोहित की आवाज़ में आप ये सुन रहे थे. प्यारा सा गाना मुंडा सुना गया बात है भाई. बहुत ही गाने प्यारे चल रहे हैं और हमें पता है आपकी पसंद भी इसमें ऐड होने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि इसके बाद हम चलाएंगे संक्षिप्त समाचार और उसके बाद आपके जितने भी मैसेजेस हैं हम उसको भी पढ़ेंगे और उनकी जो भी आपकी डेडिकेशन है, जो भी मैसेजेस आपने जिसके लिए भेजे हैं हम बिल्कुल रीड करेंगे. साथ में हम इतना ही आपको कहेंगे, भेजते रहो मैसेजेस, क्योंकि उसके बाद एक ही पूरी चकाचक सारे मैसेजेस हमने पढ़ डालने हैं. और इसके साथ में एक और आपको बताएं, आपने अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर रखना है, क्योंकि हम कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं आज आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं. क्योंकि सर्दी है तो सर्दियों में ये तो चीज़ें चाहिए, बच्चों के लिए चाहे आपकी खुद की हेल्थ के लिए, तो पेन और पेपर रखना बिल्कुल मत भूलिए. इंजॉय कीजिए अपने गाने.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check. सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से. अदिति आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कल MV Apex जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामले पर प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने पिछले हफ्ते उतारे गए 547 मवेशियों की स्थिति पर जानकारियां दी जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है. डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से पता चला है कि पर्याप्त चारा न मिलने के कारण समंदर में इंतजार के दौरान एक जानवर की मौत हो गई. शनिवार को खास ट्रकों के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जानवरों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया. एक और संवेदनशील पहलू खून का सैंपल है जिसके प्रारंभिक नतीजों की पुष्टि अब दक्षिण अफ्रीका की एक रेफरेंस लैब से की जानी है. कृषि उद्योग मंत्री ने कहा कि इस स्तर पर किसी नतीजे तक पहुँचना अभी मुश्किल है. उनके अनुसार इस मामले में बायोसिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है. असल में जुलाई महीने की शुरुआत में एमवी अपेक्स जहाज को मॉरिशस के समुद्री इलाके में 300 किलोमीटर की दूरी पर रहने का आदेश दिया गया था. बाद में परिहार्य परिस्थितियों और जानवरों के कल्याण को के आधार पर उससे मवेशियों को उतारने की विशेष अनुमति दी गई इस शर्त पर कि आयात तक सभी स्वच्छता और संबंधी शर्तों का पालन करने की लिखित जिम्मेदारी ले. राष्ट्रसभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि भारत की तरफ से प्राप्त ग्रांट से 19 मिलियन रुपए रोड्रिक्स में मूल ढांचा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजना के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं. ये रकम भारत की तरफ से 2022 में दी गई कुल 400 मिलियन रुपए के ग्रांट का हिस्सा है. इसमें शामिल परियोजनाएं और उनके पूरा होने की तारीख की सूची कल राष्ट्रीय सभा में पेश की गई. अभी तक

0: 18.4 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। टेविन सीतानैन मामले की जांच अभी भी सस्पेंडेड है। कल क्यूपिप की अदालत में सेंट्रल सीआईडी के इंस्पेक्टर सिबालक ने एक बयान में बताया कि पुलिस अभी भी टेलीफोन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए जज के आदेश का इंतजार कर रही है। तथाकथित मेनलो पार्क मामले में टेविन सीतानैन पर ICTA के तहत अस्थायी आरोप दर्ज है। पिछले साल जनवरी में DPP दफ्तर में दायर की गई मांग अभी भी लंबित है। जांच में इस विकास का जायजा लेने के लिए जांच में शुरू हुए विकास का जायजा लेने के लिए मामले को अगले 5 नवंबर के लिए स्थगित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला भी पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ा जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। अवेन्यू कोर दे गॉड ट्रेफल रोजिल में क्या 80 साल की 81 years old श्रीमती दयावंती रामतोहल पैदाशी नाम तूफानी जो स्वस्ती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनके अर्थ थे आज दिन के 3 बजे इनके बेटे श्री विनय रामतोहल के मकान अवेन्यू कोर दे गॉड ट्रेफल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिफियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 3 PM। UDC Balance Road, Plein Manyomé 45 साल की 45 years old श्री देवराज पियती जो चैप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके भाई श्री देव पियती के मकान UDC Balance Road, Plein Manyomé से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। Impasse Notre-Dame-Méberg, Safe Max Supermarket के पास 68 साल के 68 years old श्री ज्ञानदेव पिहारी जो बाबा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पिहारी के मकान एपास Notre-Dame-Méberg से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बो वालों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो आज 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
2: Stay tuned. Stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: सारे मांगते हैं फूल और हम मांगते हैं आपके मैसेजेस, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं, जानते हैं क्या क्या किसके किसके दिल में क्या क्या चल रहा है। चलो भाई, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, स्पेशली जना जी अपनी बिटिया रीमा, जनीता, श्रेष्ठा, अंशनी, सिल्विया और यूवी कृषि के लिए बहुत ही प्यार भेज रही हैं और कह रही हैं तुम अच्छे बच्चे हो, ऐसे पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। क्या बात है, ये प्यार जो है ना ये मम्मी वाला है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस वाला, और बस मम्मियाँ सारी यही चाहती हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करें और उसके बाद एक बड़े ऑफिसर बने या जो भी करें उसमें सक्सेसफुल बने, खुश रहें। तो चलिए जी, ललिता जीतन जी भी साथ दे रही हैं और कह रही हैं कि मैसेज तो मैंने कर दिया, पर मैं सच बताऊं ना, मैं हॉलीडेज बहुत इंजॉय कर रही हूं और साथ में जब ये रेडियो मस्ती चलता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है और आपका जब मैसेज आता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच। श्याम देवी चरण जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और रेडियो मस्ती सुन रहे हैं और चाय पी रहे थे, और मुझे लगता है जब मैंने मैसेज पढ़ा आपकी चाय खत्म हो गई होगी, आपको दूसरी चाय बनानी पड़ेगी, इसलिए अब आप दूसरी चाय बनाओ, मेरे लिए भी लाओ, मुझे भी बताओ कि साथ में बैठ के पीते हैं सारे जने। चलिए एंजॉय कीजिए अपने गाने। साथ में हैं अंजू लोहार जी जो कि पंपलीमुस से हैं और आज उनके पापा का बर्थडे है और उनकी वाइफ प्रमिला, टू डॉटर्स अंजू, नीलू एंड दो दामाद गणेश, दिनेश जो, और चार ग्रैंड चिल्ड्रन विश कर रहे हैं, शिवांश स्पेशली और गणपत एंड सुखराम फैमिली, लोहार फैमिली उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पापा आपका बर्थडे है पर पार्टी हमारी तरफ से नहीं है, पार्टी आपकी तरफ से है। अगर आप

पार्टी देते हैं तो फिर बताओ कहाँ चलना है शाम को। अरे क्या बात है, बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। पापा का बर्थडे, पापा से ही मांग रहे हो पार्टी। कोई नहीं कोई बात नहीं, पापा का दिल बहुत बड़ा होता है, दे देंगे दे देंगे। ललित जी भी साथ दे रहे हैं यूएसए से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। साथ में बहुत सारे लोग और जुड़ गए हैं, बस आप मैसेजेस भेजते रहो 5491294 पर और उसके बाद हम फिर से आप सबके मैसेजेस रीड करेंगे और दिल की बातें कहेंगे। देखिए क्या करते हैं ये गाना आप सबके लिए। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:26 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। भाई मस्ती होती है तो मॉर्निंग भी और अच्छी हो जाती है, बट अगर सिर्फ मॉर्निंग मॉर्निंग हो और मस्ती ना हो तो फिर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन रह जाती है। तो हमें फ्रस्ट्रेटेड तो होना ही नहीं है, हमें हंसना है, मुस्कुराना है, खुश होना है, दिल को हल्का रखना है, दिन को हल्का बनाना है। तो चलिए भाई, आज है इंटरनेशनल डे, मनाया जा रहा है वर्ल्ड ब्रेन डे। तो क्या आपने कभी सोचा है, सपने भी अक्सर हमें उसी भाषा में आते हैं जिसे हमारा दिमाग बचपन से सबसे अच्छी तरह से समझता है। यानी कि आपको कभी जापानीज में कोई आया है, कभी कोई सपना आया है, कभी कोई चाइनीज में आया हो, या कोई और ऐसी लैंग्वेज जो आपने कभी सुनी ही ना हो, कभी नहीं आता ना। यही तो हमारे ब्रेन की खास बात होती है, जो बातें हम रोज सीखते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, उसी को वो मजबूत बनाती है। इसलिए हम अपने दिमाग को अच्छी बातें, अच्छी किताबें, अच्छा खाना और जो पॉजिटिव सोच है उसे देते रहिए। वो हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और आपको बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव चीजें देता रहेगा, दिमाग से निकाल के रहेगा। अगर हम फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे तो फिर वो भी कहेगा कि चलो भाई कुछ भी इसको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मुस्कुराना है, हंसना है, खेलना है और साथ में गाने सुनने हैं। और गानों के साथ में जो भी आप काम कर रहे हैं इस टाइम, जो आप प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं, उसको 100% इंजॉय करना है। जब आप इंजॉय करेंगे आपका ब्रेन शांत होगा, आपको आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वैसे खत्म हो जाएंगे और दूसरी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हम है ना आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सोल्यूशन। मस्ती मॉर्निंग में इंजॉय कीजिए अपना ये गाना।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.
3: चलिए आज का एक मज़ेदार फैशन फैक्ट सुनिए। जब भी शॉपिंग करने जाएं, कोशिश कीजिए कि कपड़े सुबह या दोपहर की नेचुरल लाइट में ही देखें। मतलब खरीदने जा रहे हैं तो नेचुरल लाइट होगी। कई बार मॉल की ब्राइट लाइट्स में कलर ज़्यादा ब्राइट या थोड़े अलग से दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो भी देखेंगे, जो भी पहनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल राइट होगा। ड्रेस आपको शोरूम से परफेक्ट तो लगती है, वहीं घर पर या बाहर की रोशनी में उसका कलर थोड़ा सा अलग नज़र आने लगता है। इसलिए अगर शॉपिंग का प्लान हो तो मॉर्निंग नून आवर में ही जाना चाहिए। और कलर सही समझ भी आ जाते हैं और फैब्रिक भी समझ आता है, और कई बार वो एहसास नहीं होता क्योंकि कभी आपको धूप के अंदर धूप वाले ही कपड़े चाहिए होते हैं और वो थोड़े चुभते हैं और एहसास होता है कि भाई हमने राइट पसंद नहीं किया और ये काश पहले चेक कर लिया होता। घर पे आके तो उसका कलर डिफरेंट लग रहा है, उसकी टेक्सचर डिफरेंट लग रहा है, और वहाँ पर शो तो मॉल में और शॉप में तो उसको बिल्कुल अलग कलर दिख रहा था। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, नेचुरल लाइट में देखना है। अगर आप फिर भी अगर हैं सुबह है, फिर भी थोड़ा सा अगर आप बाहर आ सकते हैं उस क्लॉथ को लेकर या उस चीज को, फैब्रिक को लेकर चेक करके, मतलब ये ना हो कि वो बोले कि अरे लेके भाग गए, नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा उसके साथ में आ जाओ, उनको बोलो थोड़ा सा बाहर देखना है, और जब आप देखेंगे तो एहसास होगा कि बहुत डिफरेंस होता है, और आपको एनालाइज भी होगा और आपका फैशन भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:40 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। भाई ऐसा है कि आज एमबीसी में हमारे पास कुछ दोस्त आए हुए हैं जिन्हें देखकर दिल से सलाम करने का मन करता है। हर हंसी के साथ, हर काम के साथ और ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे का साथ हमेशा तैयार खड़े हुए हैं। हम तो यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी रहे, हमेशा खुश रहें। ये हैं भारती बिहारी, रुद्रानी महावीर, महावीर ननकू एंड गिरीश मंगला। मैं इनका प्यार, इतना मोहब्बत इतनी स्ट्रांग है ना, बस दिल करता है कि वो कह रहे हैं कि हमारी इस दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे, पर हाँ गोलमाल मूवी का गाना ज़रूर चला दो। चलो भाई, आप सबको हम दुआ देते हैं, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए और आपका ये जो गाना आपको पसंद है ये चला दें हम आप सबके लिए।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीए सेल्स लो ग्रानिट एंड क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री शॉक

0: देखो।
1: तो हर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगी खराबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिया या sikkim.mu पर जाइया। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
3: RM2
4: रेडियो मस्ती।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। जनवरी 2021 से जुलाई 2026 के बीच पुलिस ने चाकू, तलवार और अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राष्ट्रीय सभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान ये जानकारियां दी गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों से इन घटनाओं में 700 लोग घायल हुए और 40 लोगों की मौत हुई। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने कल एमवी अपेक्स जहाज के जरिए मोजाम्बिक से लाए गए पशुओं के संवेदनशील मामलों पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पिछले हफ्ते उतारे गए 547 मवेशियों की स्थिति पर जानकारियां दी। डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार शुरुआती वेटरिनरी जांच से पता चला कि पर्याप्त चारा न मिलने के कारण समंदर में इंतजार के दौरान एक जानवर की मौत हो गई। शनिवार को खास ट्रकों के जरिए और सख्त सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जानवरों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। देवेंद्र सीतानंद मामले की जांच अभी भी सस्पेंडेड है। कल क्यूबिप की अदालत में सेंट्रल सीआईडी के इंस्पेक्टर सिवालक ने एक बयान में बताया कि पुलिस अभी भी टेलीफोन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हासिल करने के लिए जज के आदेश का इंतजार कर रही है। तथाकथित मेनलो पार्क मामले में देवेंद्र सीतानंद पर आईसीटीए के तहत अस्थाई आरोप दर्ज हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर हमले किए और उसके सहयोगी हूती गुट ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी दी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया। दीजिए नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You're listening to Musty Mornings.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
3: Stay tuned. Stay musty. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ग्यारह बजकर 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और ये प्यारा सा प्रोग्राम आपके साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। जरूरी थोड़े ना है कि आप वहाँ इंजॉय कर रहे होते हो भाई, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इंजॉय करते हैं तो हम सेम वाइब्रेशन आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि क्या करें, हमारा दिल आपके बिना लगता नहीं। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप भेज सकते हैं 5499-1294 पर, और फिर आप लास्ट में बोलेंगे अरे आपने हमें बताया नहीं, तो हम आपको फिर से याद दिला देते हैं भाई आ रहे हैं अभिजीत दा, यानी कि बॉलीवुड सिंगर। 25 जुलाई को 7:30 बजे SBICC में उनका कॉन्सर्ट होने जा रहा है, और हम आपको इतना ही कह रहे हैं। सुबह सुबह हम तो बहुत सारे आपको गेम्स खिलाते हैं और उसमें आप जीत पाते हैं कि भाई गोल्ड टिकट, पर सबके लिए तो नहीं होता है ना, एक टिकट होती है, और फैमिली मेम्बर्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर आपके पास भी टाइम है या आपके पेरेंट्स 90s के हैं और उनके फेवरेट्स गाने हैं वो 90s वाले गाने, तो क्यों ना अपने पेरेंट्स को एक प्यारी सी टिकट भेज दी जाए और उन्हें भेजा जाए उस कॉन्सर्ट में। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई है तो हम आपको लाइट जला के दे रहे हैं कि आप उनके लिए कोई टिकट खरीद लीजिए, जहां पर अभी मिल रही है, और बाद में जब लास्ट मोमेंट आता है तो सब पैनिक हो जाते हैं कि टिकट नहीं है, टिकट नहीं है, टिकट नहीं है। अभी टिकट्स हैं, इंजॉय कीजिए प्रोग्राम को। और ये प्यारा सा गाना, लड़ना झगड़ना वरना मम्मी पापा ने बोलना है तुझे नहीं पता था मेरे लिए टिकट ले लेते मैं भी चली जाती या मैं भी चला जाता, तो बस उनके लिए टिकट खींचिए, फ्रेंड्स के लिए लीजिए, अपने लिए लीजिए, इंजॉय कीजिए। ये टाइम है आपका, जब आप इंजॉय करते हैं तो सब कुछ इंजॉय होता है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: M2
1: Radio Musti.
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है गानों के साथ आपकी मॉर्निंग भी मस्त रही होगी। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे मस्ती मॉर्निंग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है नीलमणि का रेट्रो रिदम में। इंजॉय कीजिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Din ke 12 baje hain. Chali sunte hain sankshipt samachar. Aap se Aditi namaskar.
6: Namaskar Nilmani, shrotaon ko bhi namaskar. राष्ट्रसभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहसें चली और कल शाम उसे पारित किया गया। ये विधेयक हाल ही में पारित हुए डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बाद कानून में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए सजा और सख्त किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही अब कोई अपराधी अपने विवाहित होने या धार्मिक स्थिति को बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

0: जनवरी 2021 से जुलाई 2015-2026 के बीच कुल पुलिस ने चाकू, तलवार या अन्य धारदार हथियारों से जुड़े 731 अपराधों की सूचना दर्ज की। राष्ट्रीय सभा में कल पीएमक्यूटी सत्र के दौरान ये जानकारियां दी गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में इन घटनाओं में 697 लोग घायल हुए और 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि कुछ खतरनाक हथियारों के बनाने, बेचने और व्यक्तिगत रूप से रखने पर देश में पहले से ही कानून के तहत रोक या नियम लागू हैं। ज़्यादा आसान और तेज़ होने के कारण ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनती जा रही है। हालांकि इसको लेकर कई जोखिम पाए जाते हैं। जनता की तरफ से प्राप्त कई शिकायतों, ज़रूरी सावधानियों और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट अब ऑनलाइन खरीदारी के नियमों पर फिर से गौर कर रही है। जनता से ऑनलाइन खरीदते हुए कुछ विशेष सावधानियाँ बरतने की मांग की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये तनाव तब और बढ़ गया जब तेहरान ने गल्फ देशों पर भी हमले किए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू कोर दे गॉट ट्रेफ रोजिल में 81 साल की 81 ईयर्स श्रीमती दयावंती राम तुहल, श्रीमती दयावंती राम तुहल, पिताजी नाम तूफानी जो स्वस्ती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके बेटे श्री विनय राम तुहल के मकान एवेन्यू कोर दे गॉट ट्रेफ रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिवियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 3 PM। लुई लाजिया गली ओकुले में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड श्रीमती साबित्रा हीरालाल, जो चाची साबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी कल दिन के 2 बजे के बेटे श्री आनंद हीरालाल के मकान लुई लाजिया गली ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भी कहा कि श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musty.

रेट्रो रिदम। रेट्रो वाइब्स लेकर आ चुकी है नीलमणि। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हो आप मेरे प्यारे बड़ी। बैक टू मेमोरी लेन की गड्डी में आप बैठ चुके हो। 70s, 80s और 90s के खूबसूरत गानों की दुनिया में ले जा रहे हैं आपको। सीट बेल्ट बांध लीजिए और वापस डाइव करते हैं इस बार किशोर कुमार जी की आवाज़ में।

0: Retro Rhythm.
1: घना था छोटा सा मुलाकात एंड भाई मुलाकात जब होती है किसी से तो कनेक्शन बन जाता है और कनेक्शन से रिश्ता कभी कभी वो रिश्ता टूट बन जाता है एंड इट कंटिन्यूज. यहाँ पर रेट्रो बॉलीवुड की बात हो रही है तो बस आप यहीं पर हमारे साथ कनेक्टेड रहना क्योंकि आपको सैर कराने वाले हैं उन टाइमलेस मेलोडीज की ओर.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:40 हुए हैं और मैसेजेस बहारों की तरफ बरस रही है। बहुत सारा प्यार के लिए शुक्रिया। अब है जना जी सुन रहे हैं रेडियो मस्ती और एंजॉय कर रहे हैं। रिक्वेस्टेड सॉन्ग आपका है फॉर योर डॉटर्स रीमा, जनिता, शेषता, अंशिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिव सरन फैमिली के लिए। अब्दुल जी और सायरा बानो जी भी मस्त वाइब कर रहे हैं गानों के साथ। बड़ी आलेश भी साथ दे रहे हैं, रोज रोज आंखों तले का गाना मांग रहे हैं। फिया जी भी साथ दे रही है नमस्ते, एंड वो एक ओल्ड रोमांटिक डुएट गाना मांग रही है अपने लिए। चलिए उसी की तलाश में मैं लग जाती हूँ अभी के लिए। आप यहीं पर रहना कनेक्टेड, इट्स योर रेट्रो रिदम शो।

0: रेट्रो रिदम।
1: शिकायत बिल्कुल भी नहीं है जी, बस गानों के जरिए आप तक प्यार यादें शेयर कर रहे हैं। अभी अभी मीरा जी का कॉल आया और वो डेडिकेट करना चाहते हैं गाना मूवी आराधना से उनके सहेलियों के लिए, संध्या जी के लिए। ढूंढ रहे हैं आपके लिए वो गाना और मिल जाए तो चिल्लाएंगे जरूर आपके लिए। शतु बेनागस से गीता जी भी साथ दे रही है, तो यहीं पर आप लोग कनेक्टेड रहना। एंड नेक्स्ट गाना आप सभी के नाम करती हूँ आरएमजू रेडियो मस्ती पर।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमा नमस्कार।
4: नमस्कार निर्मणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। 28 साल के एक व्यक्ति का दावा है कि कई लोगों ने उसका अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की और बंदूक से डराया, धमकी दी। मंगलवार सुबह पुलिस को दी गई शिकायत में पाल्मा का ट्रबोन के रहने वाले एक नाविक ने बताया कि ये घटना सोमवार रात करीब 9 बजे घटी। उसके अनुसार दो लोगों ने उसे ज़बरदस्ती एक काली BMW गाड़ी में 3 अन्य लोगों के साथ बिठा लिया था। उसका दावा है कि जब मैं दीदाम की तरफ जा रहे थे तब उसके साथ मारपीट की गई। संदिग्धों ने उससे ड्रग्स ले जाने के लिए कहा जिसके उसने इनकार कर दिया और इसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पोएटो साबल पहुंचने पर उसने 2 बंदूकें देखने की बात कही। संदिग्धों में से एक ने हवा में 2 गोलियां चलाई और उसे धमकी दी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपनी रिहाई के लिए 3 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। इसके बाद संदिग्ध उसे उसके घर वापस ले गए जहां वो भागने में सफल रहा। घायल अवस्था में उसे कौंदस के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देविन सितानेन मामले की जांच अभी भी रुकी हुई है। कल क्यूपिप जिला अदालत में सेंट्रल CID के इंस्पेक्टर सिबालक ने बताया कि पुलिस फोन कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए अभी भी जजेस ऑर्डर का इंतजार कर रही है। मेनलो पार्क कहे जाने वाले मामले में देविन सितानेन पर ICTA के तहत एक अस्थायी आरोप दर्ज है।

0: पिछले साल जनवरी में डीपीपी के कार्यालय में दायर किया गया यह अनुरोध अभी भी लंबित है। जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को तय की गई है। राज्यसभा में कल क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहस हुई। शाम को पारित किए गए इस विधेयक में हाल ही में डोमेस्टिक अब्यूज बिल के पारित होने के बाद कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिला हत्या और वैवाहिक बलात्कार के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। कोई भी आरोपी अब बचाव पक्ष के रूप में ये दलील नहीं दे पाएगा कि उसका नागरिक या धार्मिक रूप से विवाह हुआ है। और विदेश में यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के गोदामों को एक बार फिर निशाना बनाया है, जिसमें 15 लोग घायल हो गए हैं। कीव का दावा है कि इन गोदामों का इस्तेमाल रूस के ड्रोन और नेविगेशन उपकरण बनाने के लिए पुर्जे सप्लाई करने के वास्ते किया जाता रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 1 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। एवेन्यू कोडिका ट्रेफ्लोरस हिल में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दयावंती रामतोहल, पैदाइशी नाम तूफानी और जस्वस्ती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके बेटे विनय रामतोहल के घर एवेन्यू कोडिका ट्रेफ्लोरस हिल से उठाकर कॉलोव्यू की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musty.

0: चलो।
1: रेट्रो रिदम।
2: वेल ये था स्पेशल गाना पकीज़ा मूवी से फिया जी के लिए। स्वागत है आपका वंस अगेन रेट्रो रिदम के शो पर, जहां पर वाइब्स मेमोरीज दोनों भरपूर मात्रा में मर रही है। गुड आफ्टरनून, अगर अभी अभी आप कनेक्टेड हुए हैं, इस नए मिनी और दो बजे तक इस ब्यूटीफुल सफर को कैरी करेंगे रेट्रो रिदम के वाइब्स पर रेडियो मस्ती पर। एंड एक बजे से लेकर तीन बजे तक आपको बता देते हैं, एक बजे से लेकर तीन बजे तक मालेब के रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर पर एक रुकावट होगी, इस असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
1: रेट्रो रिदम
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम
1: गाता रहे आपका दिल ऐसे ही आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ है। ब्यूटीफुल कीमती गाने जो संभाल कर रेसिफ गारित किया आपके लिए चला रहे हैं आपके आपके दोपहर के खूबसूरत मेमोरीज को वापस लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं उसी जमाने में उस वाइब्स को एंजॉय करने के लिए इस बार आशा भोंसले जी की आवाज़ में।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे रेट्रो प्यार के नगमे तो हम सब ने बहुत सुने, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसा ही एक प्यार वाला समा बनाने वाले हैं अनदर खूबसूरत गीत के साथ। इस बार फरमाइश रेखा जी का है, जो रिलैक्स कर रही है घर पर अपने थर्ड डे ऑफ स्कूल वेकेशन को RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: गया।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: रेट्रो रिदम।
1: यस, रेट्रो रिदम का सफर है, मैंने अमनी यही पर हूँ। वैसे रेट्रो डॉर की बात ही कुछ और थी, जब मोहब्बत लफ्जों से कम और सुरों से ज्यादा बयां होती थी। इन गानों से कितना प्रेरणा मिलता है ना। अभी मैसेजेस पर चेक मारते हैं। पेरिस से देव जी कनेक्टेड हो गए हैं, मांग रहे हैं मुकेश जी का कोई भी गाना, वंडरफुल म्यूजिक जो कि

0: जीएस कोहली ने कंपोज किया। वो कहते हैं कि गाना उसे स्कूल के बीते दिनों की याद दिलाता है। ढूंढकर चलाएंगे जरूर आपके लिए, एंड आप विश कर रहे हैं सभी को गुड डे। अरे आपको भी वेरी नाइस डे। चलिए एक बार फिर वही प्यार भरा समा सज जाते हैं इस नेक्स्ट खूबसूरत नगमे के साथ।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

वैसे दिल कह रहा है ठहर जाने को, लेकिन टाइम हो गया है जाने का। आशा है कि आपने दोपहर का सुंदर सा नैप मेमोरी लैंड की तरफ ले लिया। अब टाइम हो गया है फिर से जागने का, तो साथ देते रहिए क्योंकि नेक्स्ट आपका बॉम्बे टॉकीज शो आरएमजू रेडियो मस्ती पर ही आने वाला है।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन एक्ट की धारा 3(9) के तहत आज सत्यव्यास फुगू ने गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की है। उनकी कार्यवधि 4 सालों की होगी। आपको बता दें कि विपक्ष नेता और प्रधानमंत्री की सलाह पर इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन एक्ट की धारा 3(5) और 3(6) के तहत उनकी नियुक्ति की गई है। कल राष्ट्रसभा में क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहस की गई। रात को इस विधेयक को पारित किया गया, जिसका मकसद डोमेस्टिक अब्यूज बिल के पारित किए जाने के बाद कानून में बदलाव लाना है। क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल में महिलाओं के कत्ल और मैरिटल रेप जैसे जुर्मों के लिए ज्यादा सख्त सजाएं दी जाएंगी। अब से एक अपराधी अपने डिफेंस में ये नहीं कह सकता कि उसने सिविल मैरिज या फिर धार्मिक विवाह किया है, इसीलिए उसे ऐसा करने का अधिकार है। मोजाम्बिक से बैलों के आयात के सिलसिले में मिशन अधिकारी दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला के गहरे अध्ययन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत गए शनिवार को बैल मॉरिशस पहुंचे। उन्हें लाशोमिया में निगरानी में रखा गया। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने दोबारा पुष्टि की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशुओं की भलाई के लिए स्वास्थ्य कदमों का बारीकी

0: इसे पालन किया जा रहा है। विदेश में फ्रांस ने जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का कानून पारित किया। इन प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों को ब्लॉक करने वाला वो पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर एक्सेस पाने के लिए फ्रांस में बसने वाले सभी लोगों को अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस कदम का स्वागत किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: लेकर बॉम्बे टॉकीज तक शिफ्ट हो गए हैं हम। गुड आफ्टरनून, इट्स योर आरएमजी रेडियो मस्ती। अभी अभी अगर आप कनेक्टेड हुए हैं वो तो स्वागत है आपका। थोड़ी ही देर में आपको मिलने वाला है परी का साथ। अभी के लिए गानों को एंजॉय करते हैं, इस वेंसडे को बनाते हैं द बेस्ट।
0: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
1: आज आजादी है
2: बॉम्बे Talkies, Radio Musti.
3: Radio Musti.

0: सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर 2:14 हो गए हैं. वेनसडे आफ्टरनून 22nd of July, साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स. चलिए आपके लिए कुछ खास हम लेकर आए हैं. जैसे कि आप जानते हैं, 2 से लेकर 4 बजे तक इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. एंड काफी टाइम से एक बात जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, यस इट्स वन डे आरजे. जैसे हमने कहा कि एक दिन आरजे की लाइफ जीना कैसा होता होगा, क्या फीलिंग होती होगी, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं सो आपको भी आपके वीडियोस हम तक पहुंचाने हैं. क्या है डिटेल्स, चलिए आपको बताते हैं.
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका.
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे,
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363.
1: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस.
2: डोंट मिस इट.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स 2:25. आपको बता दिए कि बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन वो रेगुलरली ब्लॉग लिखते रहते हैं, मगर बीते दिन उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद फैंस उनकी हेल्थ को लेकर चिंतित हो गए और बिग बी ने अपने पोस्ट में सर्जरी और आईसीयू का जिक्र किया और उनके इस पोस्ट के आधार पर लोगों ने ये कयास लगा लिया कि शायद उनकी सर्जरी हुई है, मगर ऐसा नहीं है और पोस्ट साझा करते हुए अमिताभ बच्चन ने अब सफाई दी है। अमिताभ बच्चन ने हालिया पोस्ट में ये साफ किया है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है। उनके पोस्ट को लेकर गलतफहमी हुई है और एक्टर ने कहा कि उनका पोस्ट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना की हार को लेकर था। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा है कि मैं ठीक हूँ, पोस्ट को गलत समझा गया, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा था। और उनका जो पोस्ट है बस उन्होंने ये क्लियर किया दैट आई एम फाइन एंड द पोस्ट वॉज मिस अंडरस्टूड, आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल that the period after surgery or ICU incident, the most difficult time is when you come home and have to deal with your damaged condition. So when a champion loses, the most difficult time

time is dealing with yourself and its aftermath. ये जो reference था वो था Argentina loss and Messi as a champion that lost. और people ने ये जो reference है वो समझ लिया कि वो अमिताभ बच्चन की health से related है. कहीं वो कहीं पर admit हुए हैं और उनकी health ठीक नहीं है और उनकी surgery हुई है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. reference था FIFA World Cup और Argentina की हार के ऊपर. लेकिन अब अमिताभ बच्चन ने ये clear कर दिया है कि भाई ये post बिल्कुल उनके related नहीं था और उनकी जो health है उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक है. सभी के लिए उनके फैंस हैप्पी हैप्पी, लेकिन ऑफ कोर्स अर्जेंटीना फैंस स्टिल सैड. लेकिन कोई बात नहीं, गेम है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए गुड म्यूजिक हमेशा परोसते हैं. सो थैंक यू सो मच दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप ऑन दिस वेनसडे आफ्टरनून. और आपके लिए बी टाउन की लेटेस्ट खबरों के साथ कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स, बी इट बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिर इंडी पॉप, सब कुछ लेकर आए हैं आपके लिए. साथ देने के लिए शुक्रिया एंड स्टे वेल कनेक्टेड.

सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर 251 और संदेश से आते हैं, यानी कि आपके मैसेजेस आते हैं और बस हमें बताते हैं कि हमारे जो डियर लिसनर्स हैं दे आर कनेक्टेड और ये हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो इतने प्यार से आपने हमारा साथ दिया, सो इट्स टाइम कि आपके मैसेजेस आपके अपनों तक पहुँचाएं। डेडिकेटिंग अगला गाना होगा फॉर ऑल कलीग्स, मुहावो है साथ में है व्यास रुपेश हुसैनी हु आर वर्किंग राइट नाउ, सो लोड्स ऑफ करेज टू यू और एंटरटेनमेंट का डोज यहाँ रेडियो मस्ती से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ देने के लिए शुक्रिया। ऋषि विदेशी हमारा साथ दे रहे हैं आप और कहते हैं गाना हो जाए फॉर गुड फ्रेंड हु सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज नंदीशा, और ये जो बर्थडे विश है ओ माय गॉड, ये कब से आप हम तक पहुंचा रहे थे और हमेशा हमें याद दिला रहे थे कि 22nd of July शी इज गोइंग टू सेलिब्रेट हर बर्थडे और उनके लिए स्पेशल विशेज आपने भेजना काफी लंबे टाइम से शुरू कर दिया। सो नंदीशा, इट्स योर बर्थडे आज एंड बेस्ट विशेज, ये है फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू फ्रेंड्स। साथ ही यहाँ पर जो ऋषि जी की गर्लफ्रेंड है उनकी ओर से भी स्पेशल विशेज, एंड आई डू होप कि ये दो अलग लोग हैं या सेम है आई डोंट नो, लेकिन वेल नंदीशा, इट्स योर बर्थडे आज, सो गुडी गुड विशेज टू यू ऑन योर स्पेशल स्पेशल डे, हैव अ ग्रेट वन एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुड विशेज, बी हैप्पी ऑलवेज और लव एंड ब्लेसिंग्स, ये है हमारे पूरी RM2 रेडियो मस्ती टीम की ओर से। साथ ही यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं मनीषा

and Roshan Sigopol of Bel Air Riviera se hai. So aapke liye bhi special wishes on 22nd of July. प्रियांश अजिदन हमारा साथ दे रहे हैं आप कौंदे मास पावे से और विश करना चाहते हैं बिग ब्रदर जसविन को वेरी हैप्पी बर्थडे बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम ममा पिंकी पापा धीरज सिस्टर हर्षा एंड बड़े भैया को बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेस हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको साथ ही यहाँ पर डेविसन साथ दे रहे हैं आप लाल माटी से तो चलिए थैंक यू सो मच साथ देने के लिए एंड एवरी वन हु सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे ऑन 22nd ऑफ जुलाई वी हैव स्पेशल विशेज आपके लिए हमारी रेडियो मस्ती टीम एंड इक्वली goes out aapke naam from your loved ones sabhi near and dear friends jo aapko wish karna chahte hain a very happy birthday

सो हैप्पी बर्थडे विशेस के बाद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ये हमें लेकर जाएगा आपके समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड बी टाउन की अपडेट्स. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2 Radio Musti.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musti.
6: Time check 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
7: नमस्कार और आदाब। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन एक्ट की धारा 39 के तहत आज सत्य व्यास फोगू ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने स्टेट हाउस रेजी में शपथ ली है। प्रधानमंत्री और विपक्ष नेता की सलाह पर उनकी नियुक्ति की गई। उनकी कार्यावधि 4 सालों की रहेगी। मोजाम्बिक से बैलों के आयात के सिलसिले में मिशन अधिकारी दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला के गहरे अध्ययन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत गए शनिवार को बैल मॉरिशस पहुंचे। उन्हें लाशुमिया में निगरानी में रखा गया। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेल ने दोबारा पुष्टि की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशुओं की भलाई के वास्ते स्वास्थ्य कदमों पर बारीकी से अमल किया जा रहा है। मुसन्निफ यानी लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। मौके पर सेयर्ज कॉन्स्टेंटिन थिएटर वाकवा में मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी बूढ़ी काकी को पेश किया गया। अवसर पर प्रेमचंद के पुरस्कार और हिंदी प्रेमी उपस्थित थे। विदेश में चिली में मूसलाधार बारिश की वजह से कम अज कम 13 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय इलाके में जोरदार सैलाब भी उतर आया है। सड़कों को बंद किया गया, कई घर तबाहकुन हैं। राष्ट्रपति जोसे अंतोनियो कास्ते ने प्रभावित इलाकों में आपात स्थिति की घोषणा की है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड अभियाजू पोस्ट में 38 साल के 38 ईयर्स ओल्ड श्री नितिन

0: चौधरी, श्री नितिन चौधरी, जो नीतीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनके पिता धर्मानंद चौधरी के घर रॉयल रोड रिवियाजू पोस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबू रिवियाजू पोस्ट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 एम। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं 3:09 हो गए हैं वेनसडे आफ्टरनून एंड कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज मैं ऊपर ही आपके साथ टिल 4 पीएम एंड आई डू होप दैट आज का वेनसडे आप एंजॉय कर रहे हैं 22 तारीख है आज 22nd of July और हमने देखा कि आज काफी सारे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो चलिए गुड गुड विशेस टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग दिस ब्यूटीफुल डे बर्थडे है वेडिंग एनिवर्सरी है या बस इस दिन को आप स्पेशल बना रहे हैं अपने कह सकते हैं अपनों के साथ या फिर अपने के साथ हर एक दिन तो होता है खास एंड स्पेशल और अभी के लिए तो हम लेकर आए हैं बी राउंड की अपडेट्स आपके लिए साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मस्ती सो स्टे कनेक्टेड कुछ और बॉलीवुड खबरें और कुछ और लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके लिए कहीं बजाइए साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 पीएम

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों यहां पर बी टाउन की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और आप भी हमारा साथ देते हैं. सो थैंक यू सो मच आफ्टरनून टाइम. और सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर आपके फेवरेट सेलेब्स क्या कुछ कर रही हैं और क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, ये सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं. हमारा ये जो शो है बॉम्बे टॉकीज एवरी डे यानी कि मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आते हैं. और वेल अभी के लिए खबर आ रही है कि क्या अरिजीत सिंह कर रही है प्लेबैक सिंगिंग में वापसी. आवरापन 2 के गाने के रिलीज होने पर टीम ने दी सफाई और अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद उनके कई गाने रिलीज हुए और इस पर उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर रहे हैं. और इस पर उनकी टीम ने जवाब दिया कि ये जो भी गाने हैं ये अरिजीत ने पहले से ले लिए थे और अब वो कोई नया गाना नहीं ले रहे हैं, यानी कि अब तक उन्होंने जो भी काम लिया हुआ है उसे वो कंप्लीट करने वाले हैं और प्लेबैक सिंगिंग से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं. लेकिन उनकी आवाज़ को हम ज़रूर सुन पाएंगे क्योंकि वो उनके जो पर्सनल एल्बम्स हैं वो लॉन्च करते रहेंगे एंड मे बी क्या पता शायद वो अपना जो डिसीजन है वो चेंज भी करें. लेकिन दैट्स अरिजीत सिंह और एक्सक्लूसिव अगर उनकी आवाज़ हम सुनना चाहेंगे तो बस इसके लिए तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा. लेकिन अभी के लिए उनके फैंस है सुपर एक्साइटेड. आवारापन 2 द टाइटल ट्रैक ये आ गया है अरिजीत सिंह की आवाज़ में. सो उनके फैंस हो गए हैं सुपर हैप्पी और बस अब यही जानना चाहते हैं कि क्या आगे भी उनकी आवाज़ हम सुन पाएंगे. तो अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं और वो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जो भी गाने हैं वो तो हम सुनने वाले हैं. लेकिन ही इज़ नॉट टेकिंग एनी मोर प्रोजेक्ट्स स्पेशली बॉलीवुड के लिए. वो और कोई गाना नहीं गाने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट्स वो नहीं ले रहे हैं. लेकिन जो भी काम हाथ में लिया है वो गाने तो हम ज़रूर सुनने वाले हैं. तो वेल अरिजीत सिंह के फैंस अभी के लिए थोड़े से हैप्पी इस गाने के साथ. सो वेल इस गाने को भी हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे. इट्स द लेटेस्ट ट्रैक फ्रॉम आवारापन 2. लेकिन जैसे हमने कहा थोड़ा सा इंतज़ार एंड विल प्ले दिस गाना आपके लिए ज़रूर. फॉर नाउ वी हैव खान साहब की आवाज़ और ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम फ्रॉम द फिल्म धुरंधर. चलिए शाश्वत सचदेव क्या ही एल्बम बनाया है, एक से बढ़कर एक गाने. एंजॉय दिस वन. वी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं. दैट्स योर बॉम्बे टॉकी. साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM.

एंड वेल यहां पर हमारी प्यारी सी रोशनी साथ दे रही हैं बढ़िया गाने एंजॉय कर रही हैं आप सो अच्छा लगा आपका मैसेज यहां पर पाकर सो हैव अ वंडरफुल टाइम रोशनी ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम यू आल्सो हैव अब्दुल एंड सायरा बानो साथ दे रहे हैं आप सो गुड आफ्टरनून आपको साथ देने के लिए शुक्रिया शामदेव जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप घर पर हैं एंड एंजॉयिंग योर गर्मा गर्म कॉफी विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर ऑल देव जैन परिवार एंड वी आल्सो हैव ललिता जी चलिए आपके नाम एंड फॉर ऑल जीतन फैमिली वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग

And well, friends, with this track, it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते प्रीतम जी साथ दे रहे हैं आप सभी बेटू परिवार के नाम. And इस वक्त आप आगे हैं घर पर enjoying the songs. So this one goes out for you and for wife Varsha. और यहाँ पर आरती हमारा साथ दे रहे हैं आप भी. Dedicating गाना for बेटी त्विशा, husband सनील और सभी आपके परिवारों के नाम. डिनर प्रिपेयर करते हुए गानों को सुन रही हैं आप. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू. और इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. मेरे बाद आ रही है गिरिशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स. उनका साथ निभाइए. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: बिल्कुल जी, मुलाकात तो जरूरी है, तभी तो हम आ जाते हैं साथ देने के लिए ऑन आवर एम टू रेडियो मसी। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4 PM।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: Radio Musti.
1: North, South,
3: 103.5.
1: East, West,
3: 96.4.
1: Center,
3: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
5: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार रतिना के साथ। नमस्कार।
6: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। आज बुधवार दोपहर 2 बजे बंदरगाह में तेल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया सफाई अभियान समाप्त हो गया। समुद्र में रिसाव को फैलने से रोकने के लिए 300 मीटर लंबा अवशोषक बैरियर तैनात किया गया और बंदरगाह प्राधिकरण और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पानी की सतह पर तैर रहा पूरा भारी ईंधन तेल यानी हैवी फ्यूल ऑयल बरामद कर लिया गया है। इंडियन ऑयल लिमिटेड की एक पाइपलाइन में रिसाव होने के बाद मंगलवार को लगभग 200 लीटर भारी ईंधन तेल समुद्र में फैल गया था। सतीश फगू ने आज स्टेट हाउस में इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। पदभार संभालते ही पूर्व मंत्री और पूर्व अटॉर्नी जनरल ने आंकड़ों के साथ अपनी 4 वर्षीय कार्यकाल की प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। सतीश फगू के प्रमुख दायित्वों में से एक पुलिस बल के प्रति जनता का भरोसा बहाल करना होगा। उन्होंने बताया कि ये संस्था हर साल लगभग 750 शिकायतें दर्ज करती है। इनमें से अधिकांश शिकायतें कथित पुलिस अधिकारों के दुरुपयोग से संबंधित होती है। सऊदी प्रतिनिधि मंडल का परिचयात्मक दौरा आज बुधवार को सकारात्मक माहौल के साथ संपन्न हुआ। आज सुबह पोल्ट्री में हुई बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल और पर्यटन मंत्री किशोर जवाल ने सऊदी बाजार तथा खाड़ी देशों में मॉरिशस पर्यटन गंतव्य की बढ़ती पहचान और दृश्यता पर गहरा संतोष व्यक्त किया। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते से सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन की क्षमता मिल सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों का कहना है कि समझौते की सार्वजनिक घोषणा आज तक हो सक्ती है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio

शाकिब हसन जी स्टूडियो की घड़ी में 4:06 हो चुके हैं। ऑफिस की अटेंडेंस खत्म, अब शुरू होती है मूड की अटेंडेंस, यानी कि लैपटॉप बंद, स्ट्रेस ऑफ और वॉल्यूम फुल ऑन। वेलकम टू रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइड्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर, जहां हर आफ्टरनून बनती है अ म्यूजिकल जर्नी। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। हाउ आर यू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, जो साथ देने आ गई है ऑन रेडियो मस्ती। जी हां दोस्तों, आज है वेडनेसडे 22nd of July 2026। टाइम इतने जल्दी जल्दी से बीता चला जा रहा है, लेकिन ऑन आवर एंटर रेडियो मस्ती एवरी टाइम वी हैव गॉट यू द बेस्ट मिक्स अप म्यूजिक टू मिक्स अप योर लिटिल मूड। तो चलिए जी माय डियर एंड लवली हियर पीपल, अभी के लिए आपका स्वागत है इन दिस ब्यूटीफुल शो दैट्स योर रफ्तार वाइब्स विद मी गिनिशा। एंड ऑफ कोर्स अगर अभी है रात के 7 तक लेकर आई हूं कुछ ट्रैफिक अपडेट्स, कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स, कुछ लवली बॉलीवुड अपडेट्स और गानों का सिलेक्शंस। एंड ऑफ कोर्स आपको तो पता है कार्डोज लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, यानी कि आई हैव गॉट गिफ्ट। यस, आई हैव गॉट 2 gifts टू गिव अवे अगेन टू यू इन योर रफ्तार वाइब्स। आप पार्टिसिपेट कीजिएगा जरूर, ट्राई टू

0: माला की बिना और आप बनेंगे अगर आज विजेता आपको फिर से मिलेंगे आज टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत लाइव इन मॉरिशस ऑन 25th ऑफ जुलाई सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड
1: RM2 रेडियो

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Well guys, I really hope that you're loving these beautiful and lovely गानों का selections जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए। Yes guys, you are listening to RM2 Radio Masthits में गिनिशा और जी हाँ, नो इंतजार में बैठे हैं कि कब पूछेगी ये सवाल और कब हम पार्टिसिपेट करेंगे to try our luck to get the ticket to watch the concert live in Mauritius. Yes, our singer Abhijit Bhattacharya is going to be live in concert on Saturday 25th of July 2026 शाम के 7:30 बजे at SVICCRPI और फिलहाल के लिए you can play with MBC and just stand a chance to win one ticket to the Golden 90s Era Tour featuring our lovely Abhijit Bhattacharya. So you can step into a world of nostalgia aur dobara jee sakte hain aise unforgettable voice jinhone define kiya tha Bollywood's Golden Era ko. Aap enjoy kar sakte hain kaisa evening of timeless melodies, legendary hits aur pure musical magic. Ji haan dosto, aapko yaad dilade, tickets already on sale as from 850 rupees and they are available at moticket.mu and And हम तो कहेंगे कि ऐसे मौका नहीं मिस करना चाहिए और अगर रिजर्वेशन के लिए आपको एक हॉटलाइन चाहिए टू कॉल टू बुक योर टिकट्स, यू कैन कॉल ऑन 4669999 4669999 आप लोग फोन कर सकते हैं टू बुक योर टिकट राइट नाउ राइट अवे। और फिलहाल के लिए यस, आई गॉट अ टिकट टू गिव अवे टू यू, यानी कि अभी के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई योर लक टू विन द टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव। तो चलिए जी, फिलहाल सवाल बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनेगा जरूर। हम पूछ रहे हैं अभी फ्रॉम द मूवी सैयारा। सभी लोगों ने देखा होगा द मूवी सैयारा जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज भी हुई थी एंड बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। इट वॉज अ सुपर डुपर हिट मूवी डायरेक्टेड बाय मोहित

सूरी और जिसने आपने देखा आहान पांडे और अनीत पड्डा को as actors in the movie. आपको बस मुझे इतना बताना है आहान पांडे who is actually the lead male actor of the movie. मूवी में उनका क्या नाम था, कैरेक्टर जो उन्होंने निभाया था उस मूवी में उनका क्या नाम था. You just have to tell me in the movie Sayyara आहान पांडे का क्या नाम था. 54991294 पर 5499129294. जी हाँ, send me the right answer with full name and full address के साथ, then only you're gonna be eligible to participate in the game. In the movie Sayyara, the actor आहान पांडे का नाम क्या था मूवी में. 5499129294. Best of luck to you, my dear.

That was such an iconic song, especially for you in this beautiful show. And that's your Rough Tar vibes. Jahan Dosto Choli ke piche kya hai? Hi, with the beautiful Madhuri Dixit. Actually, is gaane ne na mujhe khinch ke leke gaye hai. Back to memories from the movie Khalnayak, especially for you, my dear. To chaliye ji, saare char, yani ki saare char to bach gayi hai. On our way to Radio Masti and told those who are driving, drive carefully. Ji haan, aur filhaal ke liye, it's time to announce the lucky winner. Kisne jeeta hai aaj ka ye lucky draw aur kaun ban chuka hai lucky winner and who's going to win a ticket to watch the concert live in Mauritius of Abhijit Bhattacharya. Ji haan dosto, abhi ke liye humne pucha tha ek sawal jo bahut hi aasan hai aur bahut sare logon ne sahi jawab diye. And yes, humne pucha tha in the movie Sayyara, the actor Ahaan Pandey ka on screen name kya hai. Yes, so bahut sare logon ne sahi jawab diya, which is true. The name is Krish Kapoor. And well, thank you so much to all those jinhone participate kiya. Lekin as per the rule, always aapko to pata hai, only one lucky winner who's gonna win this ticket to watch the concert live. Aur wo hai Mr. Shashi Gangadin, jo rehte hai Nanku Road, Balu. So congratulations to you. बिल्कुल जी, आज का लकी विनर मिस्टर शशि गंगा दिन रहते हैं वो नंकू रोड बालो. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर, यू आर विनिंग अ टिकट टू गो टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस. थैंक यू सो मच टू ऑल दोस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है. बट डोंट वरी माय डियर लवली स्वीट हार्ट्स जो साथ दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम नहीं जीते, अरे दिल छोटा नहीं करते हैं. आई बी हैविंग वन मोर गेम एग्जैक्टली शॉप 6:30 ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. सो जस्ट गेट रेडी टू पार्टिसिपेट वंस अगेन, जहां पे आपको दोबारा फिर से मिल सकता है अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर गंगादिन. देयर विल बी समवन कॉलिंग यू फ्रॉम द एमबीसी सो दैट यू शुड कम हियर विद योर आईडी कार्ड टू कलेक्ट योर टिकट. सो बाकी हमारे लिसनर्स, मैं आपको याद दिला दूं दैट द कॉन्सर्ट इज गोइंग टू हैपन एट SVICC एट पाई 7:30 PM ऑन 25th of July 2026. ग्रैब योर टिकट्स ऑन moticket.mu और यू कैन ऑल्सो गेट इट ऑन रेजो ओटा. यू कॉल ऑन द हॉटलाइन 4669999 4669999.

बिल्कुल जी, आप लोगों के बिना है तो ये शो एकदम अधूरा है. सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. ड्राइव कर रही हो, स्टीयरिंग पे हाथ हो, विंडो थोड़ी सी ओपन कर लीजिए और इस आफ्टरनून का परफेक्ट साउंड ट्रैक बस इसी फील का नाम है योर रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइड्स. हर ड्राइव को बनाएगा अनफॉरगेटेबल सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर.

0: दिया।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Sports News.
4: Radio Musti in the mix.
5: चार बज के 47 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए जी, बिना टिकट कटा के लेके जाएंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में। वेव अरविंद जी, गुड आफ्टरनून।
6: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून लिसनर्स। बिन टिकट के चलान भरना पड़ेगा।
5: ऐसा टिकट हम देते हैं ना रेडियो मस्ती जो फुल ऑन, मतलब कि फ्री है।
6: अभी टिकट के बारे में बात करेंगे, काफी टिकट का घोटाला हो रहा है इन प्रीमियर लीग। एनीवे, आज कल से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहे हैं। इट्स अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, हर 4 साल होता है और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों के बीच। ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में, इसका 23rd edition। ये 1930 से शुरू हुआ था एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, लेकिन 21st century में बर्मिंगहम, गोल्ड कोस्ट, ग्लासगो, दिल्ली, मेलबर्न, मैनचेस्टर, ये सभी लोग होस्ट सिटीज रहे हैं और इसमें आज इस कल से 74 डिफरेंट नेशंस भाग लेंगे। तो इसमें कुछ पैरालंपिक्स हैं काफ़ी, इसमें मॉरिशस के भी लगभग 60 एथलीट्स आर देयर। सो इस पर आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे क्योंकि इसमें वी हैव ए टोटल ऑफ 10 डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो इनमें है एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रक साइकिलिंग एंड पैरा ट्रक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो बॉल्स एंड पैरा बॉल्स और 3x3 बास्केटबॉल और 3x3

0: थ्री व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो इसमें जैसे मैंने बताया काफी देश भाग ले रहे हैं, मॉरिशस भी इसमें हैं, एंड वी एक्सपेक्ट टू गेट सम मेडल्स आउट देयर कॉमनवेल्थ गेम्स। वी हैव बीन क्वाइट लकी। इसमें फुटबॉल भी लगभग शुरू हो गया, लगभग क्या, आज से शुरू होगा। वी आर हैविंग द यूईएफए चैंपियंस लीग सेकंड क्वालिफाइंग राउंड, जिसमें ओमोनिया का मुकाबला कायरात से होगा, लेव्स की अगेंस्ट खाइकवा, फिर एग्नासिया अगेंस्ट सेलिए। स्कॉटिश लीग कप में भी आज एक मैच है, QOTS का मुकाबला एबरडीन से। यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के सेकंड क्वालिफाई राउंड के भी बहुत मैच रखे गए हैं। कल यूईएफए यूरोपा लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड होंगे, फ्राइडे को भी ये जारी रखे जाएंगे, और कुछ फ्रेंडलीज भी हैं। जैसे फ्राइडे को वी गॉट रोजेनबर्ग वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और गलातासराय मोन्जा। ऐसे ही बाकी फ्रेंडलीज वीकेंड में भी एक खेले जाएंगे, समय समय पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ट्रांसफर बाजार में फुडेन कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ साइंड फोर ईयर मैनचेस्टर सिटी कॉन्ट्रैक्ट, जबकि बोर्नमुथ ने 64 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बिड रिजेक्ट कर दिया है चेल्सी से स्कॉट के लिए। तो कौन आएगा? इधर चेल्सी काफी मैनचेस्टर सिटी के एकेडमी ग्रेजुएट्स को साइन कर रहा है। तो 2020 एफए यूथ कप फाइनल में हारने के बाद अब अपने बारे में भी सोचने लगे हैं। चेल्सी ने अभी हाल ही में क्लब रिकॉर्ड, ब्रिटिश रिकॉर्ड 117 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर मोर्गन रॉजर्स को साइन किया, और ये खिलाड़ी जो हैं ब्लूज अंडर 18 के खिलाफ गोल स्कोर कर पाया था 6 साल पहले। फिर सिटी अकादमी कोल पाल्मा जो वो भी यहाँ पर हैं, लियान डेलाप भी, जावी अलोंजो नए स्क्वाड में नए खिलाड़ियों को ला रहा है, काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है। लिवरपूल का मैनेजर इराओला चाहता है कि मैकालिस्टर और अलिसन लिवरपूल में ही रहे, और कहा कि एक दो खिलाड़ी को साइन करेंगे। ये एक कू कह सकते हैं, 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर अल हिलाल ने समरविल को साइन किया। काफी क्लब इस खिलाड़ी के पीछे थे, क्रिसेंशो समरविल वेस्ट हैम यूनाइटेड से, नेदरलैंड्स का इंटरनेशनल। अब उसको क्लियरेंस मिल गया है मेडिकल पूरा करने के लिए। तो वेस्ट हैम ने समरविल के लिए एस्टन विला से बिड रिजेक्ट किया था, लेकिन वो अल हिलाल में चला गया, प्रीमियर लीग के कैमरे से काफी दूर। सुबह बता रहे थे आपको रैशफोर्ड इज क्वाइट डिमांडेड, चेल्सी आर्सेनल और स्पर्स उसके पीछे हैं, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे नहीं बेचना चाहता, इसलिए क्योंकि नहीं चाहता कि वो किसी राइवल प्रीमियर लीग राइवल टीम में जाए। क्रिकेट में वी आर हैविंग द क्रिकेट मैच आज, कुछ मैच खेले जा रहे हैं, इंडिया 19 अगेंस्ट श्रीलंका 19। तो श्रीलंका अंडर 19 को चाहिए 317 रन्स जीतने के लिए, और T20 मैच भी शुरू होंगे वहां पर, कहां पर है, जिम्बाब्वे में। तो इस पर भी आपको अपडेट्स देंगे। क्वाइट लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, हाल ही में वर्ल्ड कप पूरा हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स आगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे एथलीटों को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगा। एज वी ऑलवेज से, स्पोर्ट्स की दुनिया कभी सोती नहीं।
1: बिल्कुल जी, और एक जैसे मैं हमेशा याद करती हूँ जब भी आप ऐसी बातें करते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम
0: हो सकता है, और स्पोर्ट्स में
1: सो वंडरफुल फॉर टुमारो मॉर्निंग।
0: या कल सुबह कॉमनवेल्थ गेम्स पर काफी डिटेल्स देंगे आपको, खासतौर पर हमारे एथलीट्स जो या वहां पर होंगे उन पर एक प्रोफाइल तैयार करेंगे। तो विल बी देयर इन ग्लासगो टू गिव यू ऑल द डिटेल्स regarding the Commonwealth Games.
1: Thank you so much, Arvind.
0: Welcome.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Raftar Vibes. Filmy Rides.
3: RM2.
5: Traffic Update.
1: बिल्कुल जी, अगर फिल्मी

0: की बात हो रही है तो यहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे ऑन द रोड जस्ट टू नो कि अभी ट्रैफिक का क्या हाल है. सो टू ऑल दोस्त जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं ऑन आवर एमटी रेडियो मसिया, ऑफिस से घर जाने का टाइम हो गया है दोस्तों और एक्सपेक्टेड है कि रोड पर रश अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा. सो अगर आप पोर्टली से नॉर्थ या साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैफिक ऑलरेडी स्लो मूविंग है और कई जगह जाम लगना शुरू हो गया है. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग एंड आई कैन सी राइट नाउ रिजवी से फिनिक्स और आगे क्यूपिक और साउथ की डायरेक्शन में भी व्हीकल स्लो पेस में है, वो मूव कर रहे हैं और फिलहाल ट्रैफिक क्रॉल जो है वो कर रहा है, लेकिन अगले कुछ वक्त में ये स्ट्रेच और ज्यादा कंजस्टेड होने का पॉसिबिलिटी है. सो क्यूपिक साइड के रोड्स अभी के लिए रिलेटिवली क्लियर हैं, लेकिन पीक आवर बढ़ने के साथ यहाँ भी ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है. कैट्रोबोन रोजल की तरफ यूजुअल पीक आवर कंजेशन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जो ट्रैवल टाइम है लेकर निकलिए. और वेडन रोड इफ यू आर यूजिंग इट राइट नाउ वहां पर भी ट्रैफिक स्लो मूविंग है, इसलिए पेशेंस के साथ ड्राइव कीजिए. एंड हमारी तरफ से एक छोटी सी रिमाइंडर माय डियर एंड लवली ड्राइवर्स, सीट बेल्ट हमेशा पहन कर रखें, अननेसेसरी जो लेन्स चेंजेस हैं उनको अवॉइड कर लीजिए, यूज इंडिकेटर्स एंड सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, और अगर पॉसिबल हो तो फोन का यूज बिल्कुल ना करें मेरी जान व्हाइल ड्राइविंग. सो ड्राइव सेफ, स्टे पेशेंट और सभी को घर सेफली पहुंचने की शुभकामनाएं हैं. हम लेट पहुंचना पसंद करते हैं, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी सेफ. तो चलिए लेते हैं, वैसे लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने ऑन आवर एमटी रेडियो मसिया. हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू.
1: आवर एमटी रेडियो मसिया.

0: Well guys, check your time studio ki ghadi mein 5 baj ke 9 minute ho chuke hain. Welcome back in the second hour of this beautiful show. That's your Raftar Vibes. Your filmy rides with Megan Ishan. RMT Radio Mastiana gonna be here. Raat ke 7 baje tak with some dhamakedar gaane. Especially for you, my dear. To all those who are driving, drive carefully. Jo ghar pe pahunch gayi hain, 5-10 minute aaram se baith jaiye. Take out some time for you, my dear. Breathe in, breathe out. And then uske baad, baaki kaam karenge saath mein. And chaliye ji, to all those jo abhi soch rahe hain ki khane mein kya banana hai. I know that's a very, very tough question jo रोज शाम को हम अपने आप से पूछते रहते हैं लेकिन हम तो कहते हैं जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड हो सकते हैं कोई अपना आइडिया हमारे साथ शेयर करें ऑन 5499124 पर 5499124 एंड ऑफ कोर्स किसको पता यू कैन कॉपी एट द सेम मेन्यू फॉर टुनाइट सो 5499124 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर डेडिकेशन योर लवली लवली बर्थडे विशेस एंड किसी के लिए अगर आप गाना डेडिकेट करना चाहोगे सो व्हाई नॉट डू इट राइट नाउ राइट अवे ऑन RMT रेडियो मस्ती
1: RMT Radio.

0: आप लोग जज्बाती मत होना जी, हम तो यहीं पे हैं साथ देने के लिए। एंड आई होप कि अभी आप इतने बड़े ट्रैफिक में नहीं फंसे हो कि बस मूड खराब हो रहे हैं। अगर ऐसी बात है ना तो आप बस अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए, क्योंकि गिनिशा है ना साथ देने के लिए। एंड आई गना बी हियर रात के 7 o'clock तक। तो चलिए जी, धीरे धीरे आराम से हौले हौले गाड़ी चलाना। यू गना रीच योर डेस्टिनेशन सून। वैसे देखा जाए गुड म्यूजिक, गुड मूड एंड गुड कंपनी, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। वाओ, गुड म्यूजिक, गुड मूड एंड गुड कंपनी, और अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो बनती है आपका रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइड्स। और ये इट्स हैपनिंग ऑन योर रेडियो मस्ती फॉर यू माय डियर। वैसे देखा जाए क्या, अगर अभी तक आप ऑफिस में हो तो बॉस की मीटिंग तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, डेडलाइंस भी ओवर हो चुके हैं, और सिर्फ एक डेडलाइन है खुद को एंजॉय करने की। तो स्टे ट्यून ऑलवेज हमारे साथ, जहां पे आपको अच्छे अच्छे गुड म्यूजिक मीट्स गुड म्यूट। आपके म्यूट को हम पंप अप करेंगे अ लिटिल बिट। एंड आई जस्ट हैव द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट ट्रैक जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर यू, राधा जी जो है फ्रॉम कनाडा। हाय माय स्वीट हार्ट, आपको अच्छा लग रहा है बाय लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली शो। थैंक यू सो मच लिसनर्स के नाम, आपकी फैमिली के नाम, हमारे दोस्तों के नाम, आपके दोस्तों के नाम, थैंक यू सो सो मच। एंड शादी है ऑफ प्रतीक्षा बंधु एंड उनकी जो लाइफ पार्टनर है ईएश। सो बेस्ट विशेस एंड हैप्पी वेडिंग टू यू एंड हैप्पी मैरिड लाइफ टू बोथ ऑफ यू फ्रॉम चाचा मुकेश एंड चाची साधना जो है लालमाची से। हाय डियर, कैसे हो मेरी जान? हम तो बिल्कुल ठीक है, और आप हो ललिता जी? हैप्पी बर्थडे टू मिस रुक्शाना। हे रुक्शाना, इट्स योर बर्थडे, सो आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे माय डियर, एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज टुडे एज वेल। सो रुक्शाना, ब्लेस यू माय डियर, एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम योर कलीग्स टीचर सोनिया, प्रिया, सिमला, पुनीशी, माया, सलीमा, दिशा, एंड वी हैव सरीका ललिता जी ऑफ स्कूल जो पोर्टिस में काम करते हैं। और अभी तो छुट्टियां चल रही है तो बोल रही है आई मिस यू गाइस। ओए होए मेरी जान। सो आज तो नहीं पकाना है गिनी, इसलिए वॉकिंग इन द सडनाक वेलनेस पार्क व्हिच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, accompanied by your rocking rocking gaane. Hey, I just want to dance. Thank you so so much my dear. Aur aap ho hamari pyari pyari roshni so bas, it's a very good yeah, this is a very good message to pass actually. Agar roz shaam ko agar aap 30 minutes nikal sakte hain aapke liye, ya subah 5 baje, 5:30 baje, 6 baje, main to 5 baje utke 5:30 baje chali jati hu walk pe, which is a very good thing. It's very healthy and very good for your health. Aur saath saath mein khoob sara pani peete rehna just to avoid dehydration. To chaliye ji, अरे हम पानी की बात कर रहे हैं और अगला गाना हमने पीना को लाडा चुना है, कोई बात नहीं, इट्स लिक्विड जस्ट फॉर यू।
1: आरएमटी रेडियो मस्ती।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: Kamla, à la senti bon que toi là. Qui? Tu bains de parfum? Tu l'auto aussi bains de parfum? Tu sales des bains si bains de parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandal à le kick? Puis toi l'im sandal 24-7 toi?
3: Sen là, tu peux en trouver ça. Fic des bords qui sen là.
2: À le kick gel air fresh no pocket size? Astier, me comprends. Tu mets air fresh dans ton postement sportif.
3: Vrai même, tu bien comique, toi. Allez, essaye tout. Allo Kick, peine ce deuxième sambossé.
4: Allo Kick, freshness anytime, anywhere.
5: हर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगी खराबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे हैं जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिय या sikkim.mu पर जाइय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
6: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
7: Histoire gagnante du loto. 28 janvier 2026, ticket gagnant 12,9 millions Tribeca.
8: Content, un petit peu choqué aussi. Moi, je suis d'une famille modeste et on a tout à faire. Et voilà, aujourd'hui, donc finalement, l'univers, il m'a ça.
7: Des histoires gagnantes, des histoires vraies. Ferez-vous partie de la prochaine histoire gagnante du loto? Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
9: Encore plus de millions, encore plus d'émotions. Ce soir, le loto affiche un jackpot estimé à 22 millions de roupies et le loto plus est à approximativement 31 millions de roupies. C'est plus

बिल्कुल जी, दैट्स योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड यू आर लिसनिंग टू इग्निशन राइट नाउ इन योर फिल्मी राइट्स, यानी कि योर रफ्तार वाइब्स, एंड आई एम हियर टू स्प्रेड द गुड वाइब्स ऑफ कोर्स माय डियर। इट्स ऑलरेडी वेडनेसडे 22nd ऑफ जुलाई 2026, टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, हां जी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी जान, एंड टू ऑल दोस लवली कपल सेलिब्रेटिंग आउट देयर वेडिंग एनिवर्सरीज, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। लॉट्स ऑफ लव हमारी हियर रेडियो मस्ती परिवार की तरफ से, एंड वी हैव अनुराधा डियर पर्ल जो इस कार्य की रहने वाली है। डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना अपने हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए। हस्बैंड का नाम है सुनील, बेटा रोशन, रोहन, जयेश, बेटी जोशना, देवी दामाद एंड दामाद करिच जी, ये अगला गाना आप लोगों के लिए, एंड चलिए पूरे परिवार के लिए द नेक्स्ट वन।

0: यह है जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में टेकन फ्रॉम द मूवी जो है दावत ए इश्क 2014 में रिलीज हुई थी. हियर वी गो, लेट्स ऑल एंजॉय इट.
1: आर एम टू रेडियो मस्ती.

0: बिल्कुल जी, हमें भी मंजूर है आपकी दावत है। इश्क कहां पे आना है मेरी जान, जरा हमें भी तो बता दीजिए, पहुंच जाएंगे हम टाइम से। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। 5:45 होने को है, 44 हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच जी, बस यूं ही साथ देते रहना फिलहाल के लिए। लेट्स गो फॉर सम लेटेस्ट फैशन टिप्स ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएनटी फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
0: बिल्कुल जी, लेके जाएंगे फैशन की दुनिया में। और अगर आपको जीन्स पहनना अच्छा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि

0: ये है आपका लेटेस्ट फैशन अपडेट। स्किनी जीन्स को थोड़ा ब्रेक दे दो मेरी जान, क्योंकि वाइड लेग और स्ट्रेट फिट डेनिम इस सीजन का बिगेस्ट ट्रेंड चल रहा है। लाइट ब्लू वॉश, रिलैक्स योर फिट और कम्फी स्टाइलिंग इज द न्यू फैशन मंत्रा नाउडेज। सो जस्ट दे स्टाइलिश, दे कॉन्फिडेंट हमेशा विद रेडियो मस्ती। और अगर फैशन की बात कर रहे हैं तो फैशन का जलवा हो जाए।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन RMT रेडियो मस्ती। सो माय डियर लवली पीपल, अभी रहेंगे 6 बजे की समाचारों की और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यू। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। चेक योर टाइम, इट्स शार्प 6 PM।
1: RMT रेडियो मस्ती।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर और पूर्व तथा हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों की अवधि में ये परियोजना पूरी। 8 सितंबर में सर शिवसागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर एमिरेट्स लाउंज को खोला जाएगा। आज एमिरेट्स विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने सरकारी नेता से की रस्मी मुलाकात। विदेश में फ्रांस में सोशल मीडिया के एक्सेस को लेकर 15 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों के लिए 1 सितंबर से नई पाबंदी। और अब समाचार विस्तार से। आज दोपहर के 2 बजे के करीब बंदरगाह में टेर रिसाव को रोकने के लिए सफाई अभियान कामयाबी के साथ पूरा किया गया। 300 मीटर सी बॉम्ब लगाए गए। पर्यावरण मंत्रालय और बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक तेल को निकाला जा सका है और इंडियन ऑयल लिमिटेड के एक पाइपलाइन में खराबी की वजह से करीब 200 लीटर रिसाव हुआ था। ज्यादा जानकारी फिर हिमासी बुरन के साथ।
6: इंडियन ऑयल लिमिटेड की 200 मीटर लंबी पाइपलाइन के इसी हिस्से से कल दोपहर करीब 2 बजे हाइड्रोकार्बन का रिसाव हुआ। मैरूज में न्यू ऑयल जेटी के पास समुद्र में लगभग 200 लीटर भारी ईंधन फैल गया। जैसे ही इसका पता चला, बंदरगाह अधिकारियों ने तुरंत ऑयल स्पिल कंटिंजेंसी प्लान सक्रिय कर दिया, जबकि पर्यावरण मंत्रालय को बिना किसी देरी के सतर्क कर दिया गया।
7: Comme nous avons eu cette information, tout le monde s'est mobilisé et on a réalisé que c'était un operational spill.
6: Postmaster Benoît Babou बताते हैं, जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, सभी लोग तैनात हुए और ज्ञात हुआ कि ये एक operational spill है। Pipeline में छोड़ा हुआ तेल था। ये pipeline काम नहीं कर रहा था। पोर्ट इमरजेंसी सर्विस की टीम 24 घंटे तैनात है, जिसकी वजह से इस रिसाव पर नियंत्रण पाया जा सका। हाइड्रोकार्बन के रिसाव को रोकने के लिए 300 मीटर लंबे अब्सोर्बेंट बैरियर तैनात किए गए हैं। एक क्लैंप ने पाइपलाइन पर रिसाव को पूरी तरह से रोक दिया। तेल जेटी पर लंगर डाले हुए जहाज MV ऑप्टिमस भी हाइड्रोकार्बन से प्रभावित हुआ था। समुद्र के इस विशालकाय जहाज को रवाना होने से पहले भारी तेल के सभी निशानों को हटाने के लिए एक गहन सफाई से गुजरना होगा। पर्यावरण मंत्रालय के डिविजनल एनवायरनमेंट ऑफिसर लुकमान माको कहते हैं, मंगलवार से लीकेज रुक गया, उसकी मरम्मत की गई, अब बाकी के तेल की सफाई की जा रही है। जहाज की सफाई करना बाकी है, पर्यावरण पुलिस इस पर जांच करेगी, हम भी फॉलोअप करेंगे। सफाई के इस अभियान के लिए लगभग 15 लोगों को जुटाया गया था, जो 12 घंटे तक चला। ये अभ्यास आज बुधवार दोपहर 2 बजे समाप्त हुआ। नेशनल एनवायरमेंटल लेबोरेटरी द्वारा पानी के नमूने मिल गए हैं, विश्लेषण चल रहा है।
5: देश का सबसे बड़ा सड़क मूल ढांचा M4 के निर्माण कार्य इस साल के आखिर से शुरू किए जाएंगे। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर और पूर्व तथा हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों में ये परियोजना पूरी होगी। मध्य पूर्व के तना

0: के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही है और निवेश करती जा रही है। आज इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने पोर्टवी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक एमिरेट्स लाउंज को खोलने के सिलसिले में बात की। आते सितंबर में उद्घाटन किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ संघर्ष में महारत बनना एक जरूरी पहलू है। कल पोर्टवी के ट्रेजरी बिल्डिंग में सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बीच इस सेक्टर में सहयोग मजबूत करने की संभावनाओं पर बातचीत हुई। ज्यादा जानकारी वीरिमा से बुरन के साथ।
1: सऊदी अरब के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के प्रतिनिधिमंडल ने, जिसके नेतृत्व उनके अध्यक्ष माजिन बिन इब्राहिम अल कामुस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष रूप से चर्चा की। इस संगठन के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। डॉक्टर नासर अबाल खायल बताते हैं,
2: इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज इंस्ट्रूमेंटल इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन।
1: भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी लक्ष्य के साथ ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी तथा FCC के बीच एक प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हमें आशा है कि इससे दोनों संस्थाओं की मदद होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में और सूचनाओं के आदान प्रदान में।
2: Not only on preventing corruption, but also on exchanging intelligence.
1: ग्लोबी नेटवर्क के सदस्यों के रूप में सऊदी एजेंसी और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के तत्वावधान से सहयोग कर रही हैं।
2: With the political support,
1: सऊदी अरब और मॉरिशस के राजनीतिक समर्थन की बदौलत से हमें विश्वास है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकेंगे। द्विपक्षीय संबंधों या बहुपक्षीय संबंधों के मद्देनजर ये कदम उठाए जा सकते हैं। इस दौरे के दौरान क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपराधों की जांच पर भी चर्चा की गई।
0: सऊदी डेलीगेशन का मॉरिशस दौरा आज ख़त्म हुआ। अरब सल्तनत की डेलीगेट सकारात्मक है। आज मिशन के मेंबरों ने पर्यटन मंत्री गिशाओ जवाल से मुलाकात की। सऊदी और अरब मुल्कों के लिए मॉरिशस को एक मंजिल के तौर पर और ज़्यादा उभारने के लिए डेलीगेटों ने अपनी तसल्ली जताई है। ज़्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
3: मॉरिशस में हफ्ते भर का प्रवास, जिसके दौरान कई लग्जरी होटलों और पर्यटन स्थलों का दौरा किया गया। पर्यटन सेक्टर के कोई 10 पेशेवरों के प्रतिनिधिमंडल ने इस बुधवार को पर्यटन मंत्री गिशाओ जवाल से मुलाकात की। डेलीगेशन ने मॉरिशस में पर्यटन संभावनाएं खोजने के अपने मिशन का जिक्र किया।
4: Mauritius, one of the best destination as a family destination, as a honeymoon destination, as a young destination, and a destination for the people who is looking for a luxury and a relaxing destination.
5: Madame bien émerveillée par l'île Maurice, et je l'ai émerveillée par la nature, par l'hospitalité ban mauricien, et aussi par l'harmonie qui règne dans nos pays.
3: सऊदी अरब और मॉरिशस पक्षों के बीच बातचीत के दौरान मॉरिशस में सऊदी अरब और खाड़ी देशों से आने वाले पर्यटकों में वृद्धि का जिक्र किया गया।
6: Quand je parle de Maurice, c'est dans le low season pour nous, qui est très important, qui nous gagne dans le low season, au début de l'année, c'est-à-dire à partir d'avril, mai, juin, juillet, où capable de meubler sa low season comme on nous y fait l'année dernière, quand nous gagnons une saison record, nous allons dire avec 1 236 250
3: टूरिस्ट। मॉरिशस के लिए पर्यटन एक अहम स्तंभ है। ऐसे में सऊदी अरब और खाड़ी देशों से उच्च कोटि के पर्यटकों का स्वागत करना जरूरी रहता है, जो आरामदेह होटलों के लिए खर्च करने की क्षमता रखते हैं।
0: जैसे शोगुन ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंस कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से स्टेट हाउस रेजवी में गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने शपथ ली। उनकी 4 सालों की कार्यावधि होगी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने अपनी नई जिम्मेदारियों की प्राथमिकताओं को भी आम किया। और गैर कानूनी तस्करी अवैध मछली मार और समुद्री प्रदूषण समुद्र के खतरे सरहदों के पार जा रही है इन सब का सामना एक ही हल

0: के जरिए किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में आज से आते 24 जुलाई तक हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के सहयोग से ईयू मैरीटाइम सिक्योरिटी वीक का आयोजन किया। पोर्ट में इलाके के राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने के लिए एकत्र हुए। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: अपने विशाल समुद्री क्षेत्रों के साथ हिंद महासागर के देश कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध रूप से मछली पकड़ना, समुद्री प्रदूषण। 2025 में इस क्षेत्र में 1100 से अधिक समुद्री घटनाएं दर्ज की गई थीं। ये ऐसे खतरे हैं जो हर देश के भीतर कई सेवाओं और एजेंसियों को सक्रिय करते हैं, लेकिन इनके लिए इलाकाई स्तर पर भी सहयोग की आवश्यकता है।
2: La solution, c'est la coopération, entre les États.
1: हिंद महासागर आयोग के महासचिव डॉक्टर इब्राहिम नोबिया रिशो ने कहा, समाधान है राज्यों के बीच सहयोग। कोई भी देश अकेले इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। आयुसी का लक्ष्य है इलाकाई सहयोग को बढ़ावा देना। एक विशाल समुद्री क्षेत्र से घिरे द्वीप राष्ट्र मॉरिशस के लिए ये निगरानी बेहद जरूरी है। ये सीमाओं, समुद्री संसाधनों और समुद्र से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों की रक्षा करने में मदद करती हैं।
3: 2.3 मिलियन किलोमीटर2
1: मंत्री धनंजय रामफल बताते हैं, 2.3 मिलियन स्क्वायर मीटर का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इलाके के सभी संबंधित देशों को सबसे पहले अपने कानूनों को रेगुलराइज करनी चाहिए और अपनी संस्थाओं को मजबूत करनी चाहिए। यूरोपीय संघ कई दशकों से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को मजबूत करने में आईओसी और इलाके के देशों का साथ दे रहा है। ये सहयोग पहले ही परिणाम दे रहा है।
4: Il y a une architecture maritime qui a été créée grâce à la COI à l'Union européenne, où on a deux centres de coordination, un à Madagascar, autre à Maurice. On voit des résultats, on voit des saisies sur des trafics de drogue ou autre. Je pense qu'il y a un engagement politique de tous les pays de la région, avec notre appui, pour continuer à renforcer ces résultats.
1: कार्यशाला 24 जुलाई तक जारी रहेगी ताकि राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और परिचालन साझेदारों को अपने कार्यक्रमों और कार्रवाइयों को बेहतर ढंग से समन्वित करने की अनुमति मिल सके।
0: लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। मौके पर सेयर्ज कॉन्स्टेंटिन थिएटर वाकुआ में मुंशी प्रेमचंद की लिखी बूढ़ी काकी को पेश किया गया। अवसर पर प्रेमचंद के प्रशासक और हिंदी प्रेमी उपस्थित थे। जैसे कि हम बता रहे थे, मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही है और निवेश करती जा रही है। आज इस विमानन कंपनी की एक डेलीगेशन ने पोर्टी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और एमिरेट्स एयरलाइंस के कई अधिकारियों के बीच मैत्रीपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव से घिरे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मॉरिशस और दुबई के बीच विमान सेवाओं पर चर्चा की गई। वेस्ट एशिया इंडियन ओशन एमिरेट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऐसा सुलेमान अहमद बताते हैं,
5: वी केम हियर जस्ट टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड जस्ट टू थैंक हिम फॉर ऑल द सपोर्ट इवन विद एवरीथिंग दैट वाज गोइंग अराउंड ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल इश्यूज यू नो वी वर ऑलवेज हियर एट द फोरफ्रंट एंड वी हैड ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द आइलैंड एंड वी आल्सो मेड श्योर दैट यू नो इवन व्हेन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड कॉल्ड अस एंड आस्क्ड अस टू मेक श्योर दैट वी डू हैव flights that will come back to the island carrying Mauritian nationals from all across the world. We were there, we made sure that we are committed. We went immediately from the daily flight that we had. Now we have a double daily flight into Mauritius.
1: सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए एमिरेट्स लाउंज के जल्द खुलने पर भी चर्चा हुई। ये लाउंज कंपनी की नई प्रीमियम अवधारणा का हिस्सा होगा।
5: One of the new investments will be a new dedicated lounge at the airport. That's going to be the first of its kind, specifically for Mauritius and even for us, for all the network and all the lounges that we own all across the world. This is going to be the new standard. So we're very excited about it. Hopefully September, it should be ready.
1: ये निवेश मॉरिशस

0: में अपनी उपस्थिति को स्थायी रूप से मजबूत करने की एमिरेट्स की इच्छा की पुष्टि करता है। इस एयरलाइन ने 2002 में हमारे यहाँ परिचालन शुरू किया था।
1: और आज सतीश वगू ने इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नए अध्यक्ष की हैसियत से स्टेट हाउस कजवे में गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने शपथ ली। उनकी 4 सालों की कार्यावधि होगी और पूर्व अटॉर्नी जनरल ने अपनी नई जिम्मेदारियों की प्राथमिकताओं को भी आम किया। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
2: सत्यावेश फगू हैविंग बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन,
3: सतीश फोगू की एक प्रमुख जिम्मेदारी होगी पुलिस फोर्स पर जनता का भरोसा फिर से बहाल करना। उन्होंने बताया कि हर साल संस्था द्वारा करीब 750 शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इनमें ज्यादातर पुलिस बर्बरता और अधिकार के दुरुपयोग से संबंधित हैं।
4: Et aussi, il y a un manque de respect, de d'écouter. Donc, nous avons été qui m'aillèrent pour faire des choses qui, justement, pour renforcer sa relation entre le public et la police. Et ça, c'est peut-être nous avons été au niveau training, qu'on recrutait même au début.
3: 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त सतीश फोगू पूर्व जज देवयानी बिसुंदोयाल की जगह इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के नेतृत्व का भार संभालेंगी।
1: विदेश में फ्रांस ने जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का कानून पारित किया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों को ब्लॉक करने वाला वो पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर एक्सेस पाने के लिए फ्रांस में बसने वाले सभी लोगों को अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इस कदम का स्वागत किया है। भारत में शिक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन के संदर्भ में विपक्ष नेता राहुल गांधी को रिहा किया गया है। छात्र प्रदर्शन कारी संसद के सामने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। परीक्षाओं में लीक संबंधी समस्या के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। करीब 2 मिलियन मेडिकल छात्रों को फिर से इम्तिहान देना पड़ा।

देश विदेशी खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण की तरफ पाए जा रहे सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश के दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। कल दोपहर बाद के समय उत्तरी इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परी समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। कल सूर्योदय 6:43 पर होगा।

तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में, रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री रविंद्रनाथ बख्तावो, श्री रविंद्रनाथ बख्तावो जो बीबी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थे कल दिन के साढ़े दस बजे उनके घर रॉबिन्सन रोड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। नंबर 23 बाउंड्री स्ट्रीट रोजल में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मीन पुराऊ

0: पैदाशी नाम आकालू, पैदाश नाम आकालू और जो लक्ष्मी ललुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके घर नंबर 23 बाउंड्री स्ट्रीट रोजेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडुगाव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM। रॉय रोड रिविया जुपस में, रॉय रोड रिविया जुपस में 38 साल के 38 ईयर्स ओल्ड के श्री नितिन चौधरी जो नीतीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के दस बजे उनके पिता श्री धर्मानंद चौधरी के घर रॉय रोड रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौहाबू रिविया जुपस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। Impasse Notre-Dame Maïbomé, Save Max Supermarket qui passe, 67 साल के 68 years old के श्री ज्ञानदेव पिहारी जो बाबा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पिहारी के घर Impasse Notre-Dame Maïbo से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोवालों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। EDC Balance Road Plan Magnomi 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री देवराज पेयती जो शेप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके भाई श्री देव पेयती के घर ओडीसी बैलेंस रोड प्लान मानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। रू लुई लाजर ओकुलेमी 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती साबित्रा हिराला जो चाची साबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री आनंद हीरालाल के घर रुई लुईला से ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2 PM। नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट थ्रोंगबोमी 60 ईयर्स ओल्ड के श्री मुगम गोविंदन गुंडन जो नंदा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के दस बजे उनके भाई श्री धर्माराजन गोविंदन गुंडन के घर नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट थ्रोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रोंगबो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: वेलकम टाइम बीटा चला जा रहा है, 6:28 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम। सो वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइट्स। और फिल्मी राइट्स अगर की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम आपको लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में। वी सम बहुत ही प्यारे प्यारे बॉलीवुड के गाने और साथ साथ में आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू वंस अगेन। वादे के मुताबिक देखा जी हम कितने पक्के हैं वादे के। हमने बोला था आई विल बी हैविंग वन मोर ticket to give away to you to watch the concert of Abhijit Bhattacharya live in Mauritius. So right now what you can do, you can just play with MBC or aap jeet sakte hain. You can stand a chance to win one ticket to the golden 90s era tour jo Abhijit Bhattacharya aane wala hai Mauritius mein for the live concert on Saturday 25th of July 2026 jo shaam ke 7:30 baje se hoga at SVICC 8 pa. So you can step into a world of nostalgia my dear and relieve the unforgettable voice jinhone फाइन किया है बॉलीवुड के जो गोल्डन एरा को एंड आप एंजॉय कर सकते हैं एक ऐसे इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड अ प्योर म्यूजिकल मैजिक। टिकट्स जो हैं दे आर ऑन सेल ऑलरेडी आज फ्रॉम

FM 2. बिल्कुल जी, दैट्स योर फिल्मी राइट्स विद मी, योर आफ्टर वाइब्स ऑफ कोर्स गिनिशा के साथ ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती। चिपच के 40 मिनट हो चुके हैं और फिलहाल के लिए इट्स टाइम टू चेक इट आउट कि आज का लकी विनर कौन है। जी हाँ, पूछा गया था एक सवाल, हमने आपको सुनाया था एक प्यारा सा गाना और हमने पूछा था कि ये कौन से मूवी से लिया गया है। वेल दैट वॉज द सॉन्ग, पूछा गया था कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, विच इज राज। जी हाँ, इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी राज और बहुत सारे लोगों के पार्टिसिपेशन के बाद ऑफ कोर्स हमने लकी ड्रॉ किया है और आज का लकी विनर है हमारे सत्यजीत डनू जो रहते हैं पॉम्पलमूस में। So congratulations to you, Mr. Satyajit Danu. He is from Pamplemousse. So you are winning a ticket to watch the concert of Abhijit Bhattacharya live in Mauritius on 25th of July 2026 from 7:30 p.m. at SVICC at Pai. Yeah. So thank you so much for participating. There will be someone calling you from the MBC to let you know ki aap apna ID lekar kab aa sakte hain to collect your ticket. So thank you so much for participating. Baki hamare listeners and kal phir lautenge ek nahi do ticket ke saath in your Raftar Vibes.

तो चलिए जी, इट्स टाइम फॉर गणेश चतुर्थी से गुड बाय टू यू। हम कल फिर मिलेंगे इन योर अफ्तार वाइब्स 4 से 7 बजे इन द आफ्टरनून। तब तक के लिए कीप ऑन लिसनिंग टू गुड म्यूजिक ऑन आवर रेडियो मस्ती।

0: मेरी जान मेरी जाने जिगर मेरे लखते जिगर आपसे कुछ कहना है और वो ये है कि हम भी आपसे बेशुमार बेमतहा प्यार करते हैं और थोड़ी सी आपस में प्यार के इस फीलिंग को शेयर करने के लिए और दिल के जज्बात को सुनने सुनाने के लिए ही दिल का हाल बयां करने के लिए ही हम यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड आप लोग इतने प्यार से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इस फीलिंग को हम आंखें बंद करके इसका एहसास कर सकते हैं. और वैसे कहते हैं ना कि द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज नॉट सीन इट्स फेल्ट. और जब आप इसको दिल की गहराई से महसूस करते हैं तो बस प्यार को ही आप पाते हैं और प्यार से ही आप इस ज़िंदगी को संवार सकते हैं. और उतने ही प्यार से हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2. तो चलिए दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर टिल 9 PM. सम ऑफ योर मैसेजेस एज यूजुअल. जी हाँ, आपके मैसेजेस का हम इंतज़ार करेंगे ऑन 5499 1294. सेंड अस योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर. और हम ज़रूर जानना चाहते हैं एज यूजुअल कि किस तरीके से आप इस मिडवीक मस्ती को स्पेंड कर रहे हैं. आज तो वेंसडे है और बाकी दो दिन का आप बहुत ही पेशेंटली से आप इसका स्वागत कीजिएगा और इसके बाद वीकेंड को वेलकम करने के लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाएंगे. तो चलिए जितने भी जो वीकडेज में दिन बचे हुए हैं उसको हम प्यार से गुजारेंगे और आई जस्ट होप कि हमारे इन गीतों के साथ साथ आपको टाइम मिलेगा और आपको मौका मिलेगा टू रिवाइव सम ऑफ योर ब्यूटीफुल मेमोरीज. गानों के साथ कुछ खूबसूरत यादें भी जुड़ी होती हैं, इसलिए हम थोड़ा बहुत आपको मौका देंगे ताकि आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर पाए. तो चलिए वंस अगेन रिमाइंडिंग यू दैट यू कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती जहाँ पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज एंड कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musty.

0: वेल, 7:22 हो चुके हैं। अगर आप लोग इस वक्त अपना डिनर ले रहे हैं तो आपको विश करेंगे बन अपीचे शुभाहार। वैसे खाने और गाने का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप गुड म्यूज़िक के साथ जुड़े रहते हैं तो आराम से आपका खाना भी हो जाता है और आप खुश भी होते हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी तरीके से चलता है। सो इट्स वेरी वेरी नाइस टू बी स्टेइंग कनेक्टेड विद गुड म्यूज़िक। और यहाँ पर गुड म्यूज़िक के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है और एक साइड कॉर्नर भी होता है जहाँ पर आपको मौका मिलता है टू सेंड सम ऑफ योर मैसेजेस, जहाँ पर हम आपको थोड़ा बहुत पैम्पर करते हैं अपने तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर। हेलो टीम, लिसनिंग टू रेडियो मस्ती वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, प्लीज डेडिकेट अ रोमांटिक सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड आकाश, जस्ट वांटेड टू रिमाइंड हिम दैट आई लव हिम सो मच, फ्रॉम वाइफ कृति। कृति, ये आपने एकदम सही मैसेज भेजा है, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड हिम, क्योंकि कभी कभी प्यार को हम भूल जाते हैं या भुला देते हैं, और उसी प्यार को हमेशा जगा कर रखना, उस फीलिंग, उस एहसास को हमेशा ज़िंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बार बार एट टाइम्स यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड एट टाइम्स यू नीड टू रिमाइंड देम ऑफ योर लव। सो साथ में यहाँ पर हमारे प्यारे से भैया अंतिश ऑल द वे कनेक्टेड है फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। और क्या बात है अंतिश, सीधे बहन से आपने मुझे मासी बना दिया, कोई बात नहीं, आपको भी प्रणाम प्रणाम एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शंस। और आप कहते हैं कि थैंक यू फॉर दोज मोमेंट एवरी डे, थैंक यू टू यू कि आप इतने प्यार से साथ देते हैं और साथ समुंदर पार होने के बावजूद भी यू आर सो हम्बल एंड यू आर सो ग्राउंडेड एंड इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि ये एक गुड ह्यूमन बींग की निशानी है। एंड आई जस्ट होप कि ये अच्छाई सबको दिखे आप में। एंड द नेक्स्ट ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर अंतिश एंड तिनुषा, जो इस वक्त बहुत ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड The next one we will definitely like to dedicate especially for Antish and Tinusha. So this one goes out specially for both of you.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: सात बजकर 35 मिनट हो चुके हैं। शाह घोषाल सुन निगम एंड जयेश गांधी की आवाज़ों में खूबसूरत सा ये गाना आहिस्ता आहिस्ता दिल में कोई आ ही जाता है और उस दिल में जगह बनाकर बस ही जाता है। अगर आपको लगता है कि हमारे गीतों को सुनने के बाद ऐसा कोई है जो आपके दिल में बसा हुआ है और उनका नाम उनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल उनके लिए एक खास डेडिकेशन ऑन 5499 1294।

0: 7:48 ऑलरेडी एंड चलिए कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे. हेलो दिव्या, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच पूछने के लिए. एंड ललिता जी, इतन जी, आप हिला पहुंचुअर से, ऑल गाने बहुत ही अच्छे हैं और आपकी फैमिली बहुत ही एंजॉय कर रही है हमारे शो को. थैंक यू सो मच ललिता जी. गुड इवनिंग दिव्या. ऋषि विदेशी वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर योर गुड फ्रेंड नंदी शाह, हू सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. एंड आज शाम आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने खास इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए एक मस्त गाना बिल्कुल विद योर मूडी गर्लफ्रेंड ऑफ बॉम्बू फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड. तो चलिए ये अगला गाना गुजार स्पेशली आपकी फ्रेंड नंदी शाह के लिए एंड ऑल दोज जो अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और आई जस्ट होप दैट रेडियो मस्ती के साथ आपका ये जो खास मौका है वो और भी स्पेशल बन जाए. एंड आई जस्ट होप दैट इट बिकम्स मोर स्पेशल. एंड चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मे बी आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ सात समुंदर पार, आप भी अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाएं. और वैसे कल काफ़ी लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे थे फ्रॉम अब्रोड, ऑलमोस्ट अब्रोड से ही काफ़ी मैसेजेस आए थे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा था. सो डेफिनेटली डू टेल अस आप क्या कुछ कर रहे हैं अब्रोड में, मौसम कैसा है, टेम्परेचर कितना है, और काम आप कर रहे हैं, घर पर हैं, छुट्टी पर हैं, क्या कुछ कर रहे हैं. डेफिनेटली वुड लाइक टू नो ऑन 5499 1294.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

अनुपम रॉय एंड श्रेया घोषाल की आवाजों में खूबसूरत सा ये गाना फ्रॉम द मूवी पीकू, एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और इसका टाइटल सॉन्ग ही जर्नी सॉन्ग हुआ है। तो अगर आप लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते इस गाने को सुन रहे हैं, आई जस्ट होप दैट यू आर हैविंग अ ग्रेट ग्रेट म्यूजिकल राइड।

0: एकदम सही बात है दोस्तों, इश्क के बिना जिया नहीं जाता है और इश्क के बिना रहा भी नहीं जाता है। इश्क तो इतना खूबसूरत है कि इश्क से ही अगर आप दिल और प्यार करेंगे तो आपको और भी प्यार हो जाएगा। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप हमारे गीतों को सुनने के बाद यू कीप ऑन फॉलिंग इन लव अगेन एंड अगेन एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो चलिए, हमारे गीतों को सुनने के बाद अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई ऐसी ख़ास यादें उभर कर सामने आ रही हैं तो ज़रूर हमारे साथ भी आप अपनी इन यादों को शेयर कीजिए। 1549912948 8:12 जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं आपको, बस हम विश करेंगे भूख हाज एंड बस मन लगाकर आप काम करते रहिए और मेहनत का फल तो आगे चलकर आपको मिलेगा ही ज़रूर। कीप ऑन ट्राइंग अनटिल यू सक्सीड। और वैसे कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सो जीत तय है लेकिन कब, कहाँ और कैसे ये तो बस एक डिवाइन प्लानिंग है और यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग विद द फ्लो। कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम उन चीज़ों के लिए झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और वी कीप ऑन फाइटिंग और कोई लाइट कुछ भी नहीं दिखाई देता है और हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। बट यू आर डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि अगर आप गुड थिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे आपके लाइफ में तो हमेशा अच्छी चीज़ें ही आएंगी। तो चलिए, यहाँ पर हम अच्छे गीतों को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में और इन गीतों को सुनने के बाद यू विल डेफिनेटली बी फीलिंग गुड। एंड जब वो फील गुड वाला फैक्टर होता है ना, वो आपके ज़िंदगी में डोमिनेट करता है तो आपके साथ और भी अच्छा होता है। तो चलिए, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे टिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज, जहाँ पर दिव्या का साथ है।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: ऑलराइट है, जैसे ही हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की कि आप लोग अगर सात समंदर पार हैं हमें मैसेजेस भेजे, तो यहाँ पर रेणुका जी का मैसेज आया है. थैंक यू सो मच. आप कहती हैं, हाय दिव्या, होप यू हैविंग अ नाइस इवनिंग. आई हैव बीन लिसनिंग टू द शो एंड एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. और इस वक्त आप थोड़ा गातो पीमा बना रही है. नो स्पेशल ओकेजन, आई जस्ट फैंसी सॉन्ग, दैट्स रियली नाइस. जब भी मन करे ना किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचो तो उसको फटाफट बना ही लेना चाहिए. और जो आपका मन कहे, जो आपका मन करे, आप वही कीजिए, यही जिंदगी है. वेल, आप कहती हैं, हमें थैंक यू फॉर द वंडरफुल शो, हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू टू यू रेणुका जी कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रही हैं. एंड वी फील ऑनर्ड कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट दिखाते हैं. एंड इट फील्स रियली नाइस टू बी हैविंग पीपल फ्रॉम अब्रॉड जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ. आई जस्ट होप कि आपका ये इवनिंग या फिर आपका ये डे बहुत ही अच्छे से बीते हमारी खूबसूरत गीतों के साथ. 8:22 हो चुके हैं. कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. ऑफ कोर्स वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ आकांक्षा शर्मा, जोगी. एंड अगर आप भी प्यार में जोगी बन चुके हैं तो चलिए अपनी उस प्यार के लिए ज़रूर एक प्यार आप पैगाम भेजिएगा ऑन 5499-1294. एंड अगर आप की ज़िंदगी में कोई है जिसके साथ आप अपने सुख दुख बांटते हैं, जो भी छोटे छोटे सीक्रेट्स आप उनके साथ शेयर करते हैं, सो यू आर डेफिनेटली द लकी वन. क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में. और अगर आपके पास एक ऐसा प्यार है जो बिना आपको जज किए, बिना कुछ ज़्यादा कहे आपको बस सुनता ही रहता है या फिर सुनती रहती हैं, सो डेफिनेटली आप ऐसे इंसान को ट्रेजर करके रखना, बिकॉज वी डोंट मेक सच पीपल एनी मोर. एंड आई जस्ट होप कि आपका ये प्यार बस दिन ब दिन बढ़ता रहे.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Well, it's already 8:37 and चलिए यहाँ पर दीपिका हैं हमारे साथ और आप कहती हैं हेलो दिव्या जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम वेडिंग अभी आप खूबसूरत गीतों के साथ रिलैक्स कर रही हैं लविंग द सॉन्ग सिलेक्शंस एज ऑलवेज थैंक यू सो मच दीपिका इट मींस अ लॉट एंड चलिए यहां पर सुनील जी के मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं क्या बात है हमेशा आपके इतने सारे मैसेजेस आते हैं थैंक यू सो मच सुनील जी एंड आप इस वक्त थ्योले से हैं एंड मिस्टर सुनील रघुबीर के लिए द नेक्स्ट ट्रैक एंड साथ में आप यहाँ पर अगला गाना किसके नाम दरकेज करना चाहते हैं आपने लिखा ही नहीं कोई बात नहीं आप ज़रूर शायद अपनी वाइफ के लिए डेडिकेट करना चाहते होंगे द नेक्स्ट गाना और आपकी दो भी बेटियों के नाम भी एंड ऑल रघुबीर फैमिली ऑफ त्रियुले
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: This one's taken from the movie Tum. Kyun Mera Dil Adnan Sami ki awaaz mein. आपका दिल क्या चाहता है ये दिल से पूछिए और दिल ही जवाब देगा. कभी कभी दिल से हम सवाल करते हैं और दिमाग के सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दिल की हमेशा सुननी चाहिए क्योंकि उधर ही प्यार बसता है. दिमाग में तो सिर्फ लॉजिक होता है, दिल में मैजिक होता है. 8:55 हो चुके हैं और चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल सेम टाइम 7 बजे से लेकर टिल 9 PM. और एक बार फिर से सुनील जी का मैसेज आया है. सुनील जी, रघुबीर फैमिली के लिए नेक्स्ट गाना और साथ में यहाँ पर आपके मैसेजेस तो हम तक ज़रूर पहुँच रहे हैं. जो लास्ट मैसेज आपने भेजा है, क्या बात है क्या बात है. ये मैसेज पढ़ के तो शायद आपकी बीवी खुशी हो जाएगी. एंड चलिए ये गाना गुजरात स्पेशली फॉर यू.

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: A very good evening, ladies and gentlemen. स्वागत आप सभी का और ये म्यूजिकल सफर जहां पर अभी शुरू हुआ है चलता रहेगा मिडनाइट तक. क्लॉक ने 9 बजाए और बॉलीवुड के हम बॉलीवुड के सुपरहिट गानों को साथ लेकर आ गए. दिन भर की टेंशन अब साइड में रखिए और दिल को थोड़ा हल्का कीजिए. चेहरे पर स्माइल और 3 घंटे के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ पर खाली म्यूजिक, मस्ती और पॉजिटिव वाइब्स.

कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ते हमें सबसे मजबूत बना देते हैं। हर चैलेंज एक नई लर्निंग, एक ट्रेनिंग लेकर आता है। इसलिए मुश्किलों से घबराइए मत, बस अपनी कहानी लिखते रहिए, और वो भी कॉन्फिडेंस की स्याही के साथ।

अच्छा, कहते हैं कि छोटी सी काइंडनेस कभी छोटी नहीं होती। लिफ्ट का डोर होल्ड करना या फिर किसी की बात ध्यान से सुनना या बस एक आप कैसे हैं पूछ लेना, यही छोटी छोटी बातें ना दुनिया को और खूबसूरत बनाती हैं। तो इस खूबसूरती का हिस्सा बनेंगे या बन चुके

0: हर सपना ओवरनाइट रियलिटी नहीं बनता, लेकिन हर रोज की कंसिस्टेंसी एक दिन हिस्ट्री जरूर बना देती है। आज का जो एफर्ट आप कर रहे हैं, कल वही आपकी पहचान बन सकती है। कीप मूविंग, कीप बिलीविंग।
1: बेबी, यू लुक सो फाइन, कम ऑन ओवर टू मी, लेट मी लुक एट यू, लुक एट यू।

अच्छा आज एक काम जरूर कीजिए, अपने पेरेंट्स या किसी बुजुर्ग को कॉल कीजिए जो आपका फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो या करीबी हो। उनकी आवाज सुनने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उनकी जो खुशी है ना वो घंटों तक, दिनों तक रहती है। रिश्तों को वक्त चाहिए और वही सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट होती है।

R&2 पर लेट नाइट ग्रूव्स और हम कोशिश करते हैं कि अपने गानों के साथ साथ कुछ जिंदगी के छोटे छोटे एलिमेंट्स भी शामिल करते जाएं, कुछ ऐसी चीजें जो हो सकता है इस बिजी लाइफ में हम भूल जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं जेलेसी की। जेलेसी से किसी का कुछ नहीं बदलता, लेकिन अप्रिसिएशन से सबका दिल जीत सकते हैं। दूसरों की सक्सेस देखकर इंस्पायर हो जाइए, कंपेयर मत कीजिए। हर इंसान अपनी टाइमिंग पर चमकता है, आपकी बारी जरूर है।

ऑफिस हो, बिजनेस हो या पढ़ाई, कभी सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। वो थ्री इडियट्स में भी कुछ ऐसी था ना, जब सफर पसंद आने लगे तो मंजिल और भी खूबसूरत लगती है।

कहते हैं कि उम्मीद होप एक छोटी सी रोशनी है जो अंधेरे में लड़ना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। अगर आज सब कुछ परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, कल एक नई सुबह होगी और नए मौके भी लेकर आएगी।

अच्छा कहते हैं ना कि जो मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं वो जीत जाते हैं। अरे कभी अपनी स्माइल को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, हो सकता है आपकी एक मुस्कुराहट किसी का पूरा दिन बदल दे। खुश रहना भी एक आदत है, एक टैलेंट है, और हर आदत प्रैक्टिस से बनती है। तो मुस्कुराइए और जिंदगी आपको ऐसे ही बाहें खोलकर गले लगाएगी।

जिंदगी में बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे भी बड़ी बात है। रिस्पेक्ट दीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए और हमेशा हम्बल बनिए। यही है असली सक्सेस।

हो सकता है कि कभी कभी जैसे आपके हिसाब से दिन नहीं चला हो और ऐसा हुआ तो खुद पर नाराज मत होइए। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है या आपके हिसाब से हो ये भी जरूरी नहीं है, बस हर दिन कुछ सीखना जरूरी है। और ये याद रखिए, अपने आप से बोलिए कि नेवर गिव अप, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।

0: अरे साहब, बातों ही बातों में पता नहीं चला कि हम पहुंच गए मिडनाइट के बहुत ही करीब, बहुत ही पास। मैं विकास और यहाँ पर आपसे इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया। और हर नए दिन को एक नई उम्मीद के साथ ऐसे ही शुरू करते हैं। 24/7 आपका साथ देने के लिए म्यूजिक लेकर हाजिर हो जाते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और हमेशा मुस्कुराते रहिए रेडियो मस्ती दिल से।
1: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
2: टक टक बॉलीवुड।